हम आकाशवाणी के छायबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज गुरुवार है, शक संवत 1948, भाद्रपद माह की तिथि 26, तदनुसार 17 सितंबर ईस्वी सन 2026।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The three-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years of public service as a head of government.

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। हमारे आज के कलाकार हैं सुरेश वाडेकर।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:20 हो रहे हैं। श्रोताओं, वक्त हो चला है कार्यक्रम समर्पण का, तो आइए आरंभ करते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आपसे कुछ देर में आपको सुनाएंगे आज की कार्यक्रम रेखा। कृपया प्रतीक्षा करें।

श्रोता, आइए अब आपको सुनवाते हैं आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 7 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम जोहार चायबासा का। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, इसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। 8:15 का वक्त होगा अंग्रेजी समाचारों का। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार। 8:40 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत। हमारी आज की कलाकार होंगी अनीता कुमारी और उनके साथी।

9 बजे का वक्त होगा श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा का। इस कार्यक्रम में हम करेंगे चर्चा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और विश्वकर्मा पूजा पर। सुनवाएंगे भेंट वार्ता, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी, कारण लक्षण और उसके उपचार, इस विषय पर। 9:30 पर पेश करेंगे कार्यक्रम रंजन। 10 बजे आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT। 10:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

हमारी संध्या सभा हम आरंभ करेंगे संध्या के 5:05 पर, और सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे युगल गीत। 5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 6:00 आपको सुनवाएंगे मुख्य समाचार।

6:02 पर हम हाजिर होंगे लेकर बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 का वक्त होगा संथाली कार्यक्रम का। 6:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। उसके तुरंत बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम जिले में आजकल। 7:15 का वक्त आपके चहेते कार्यक्रम आपकी पसंद का होगा। यह कार्यक्रम श्रोताओं की पसंद पर आधारित होगा।

7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 8:00 चीयर फॉर भारत बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026। 8:30 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम रजनीगंधा लेकर। 8:45 का वक्त समाचार संध्या का होगा। 9:00 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10:00 हम हाजिर होंगे गजलों के कार्यक्रम महफिल के साथ। 10:30 का वक्त होगा कार्यक्रम सुरों के रंग का। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आपको सुनवाएंगे अंग्रेजी समाचार। और 11:10 पर हम हमारी आज की सभा समाप्त करेंगे।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 6:45 हमारे स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारी आज की कलाकार हैं सपना दुबे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारी आज की कलाकार थी सपना दुबे। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में हम आरंभ करेंगे कार्यक्रम जोहार चायबाजा।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम जोहार चाईबासा। आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम का और सबसे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत। फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम, आवाज़ है महेंद्र कपूर की।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार का गाया फिल्म प्यार का मौसम का ये गाना। कार्यक्रम जोहार चायबासा के सिलसिले को हम बढ़ा रहे हैं आगे और आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार की ये जा का ये गाना। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा। इस कार्यक्रम का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं राम बलराम फिल्म का ये गाना।

राम बलराम फिल्म के इस गीत के बाद अब आइए सुनते हैं बंदिश फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम जोहार चायवासा में अभी आपने सुना आओ प्यार करें फिल्म का गाना, आवाज़ कुमार सानू की थी। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोग का ये गाना, आवाज़ है केके की।

अभी आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म का गाना, आवाज़ येसुदास की थी। अब आइए सुनते हैं रोज़ा फिल्म का गाना मिनमिनी की आवाज़ में।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ हम आज का कार्यक्रम जोहार चायबासा यही समाप्त कर रहे हैं। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच थ्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में जीडी करना लोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज, सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
5: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
6: साणन और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणन का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। साणन में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
5: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
7: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
5: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजिनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिक

0: है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द है। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्युरेट सेमिकॉन इंडिया 2026 एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. US Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. U.S. House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international between India and Afghanistan to be played in Delhi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate SEMICON India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning.

0: गया। क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
1: अभिमा बहुत कमजोर है, उसे दो दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से एक महीने तक चलाएगी राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान। देशवासियों से एक दिया जलाने का आह्वान। झारखंड हाईकोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति मामले में जेएसएससी की ओर से बहस पूरी। सरकार 30 सितंबर को रखेगी अपना पक्ष। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षा घोटाला मामले में दो अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। राज्य सरकार ने मरीजों को 4 घंटे के भीतर सुरक्षित ब्लड उपलब्ध कराने के लिए एमएस साइंस कंपनी के साथ किया एमओयू। रांची में बनाया जाएगा कमांड सेंटर। और झारखंड में 20 सितंबर तक बादल छाए रहने और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। राज्य भर में कल वज्रपात से 5 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से एक महीने तक राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
3: इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ और चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने लोगों से आज शाम एक दिया जलाने का आह्वान किया है। चतरा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर भाजपा सेवा संकल्प अभियान के तौर पर मना रही है।
5: 17 सितंबर को भारत देश के लिए ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है जो बिना रुके लगातार 25 वर्षों से देश की सेवा करते आ रहे हैं, अथक प्रयास कर चलते आ रहे हैं। वैसे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री को लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु संध्या 6 बजे से 7 बजे एक एक दिया आशीर्वाद हेतु जलाए।
3: राज्यपाल सचिवालय ने नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। सरकार की सहमति के बाद राज्यपाल सचिवालय बर्खास्तगी का आदेश जारी करेगा। नए विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब कुलपति को बर्खास्त करने के लिए राज्य सरकार की भी सहमति जरूरी है। प्रस्ताव में कुलपति दिनेश सिंह पर वित्तीय अनियमितता, गबन और सरकारी नियमों का उल्लंघन कर पीएल खाते में जमा राशि को अपनी मर्जी से खर्च करने का उल्लेख किया गया है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़ी नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अपील पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में जेएसएससी की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब राज्य सरकार की ओर से 30 सितंबर को अपना पक्ष रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि राज्य सरकार और जेएसएससी इस मामले में कोई शपथ पत्र दाखिल करना चाहते हैं तो 24 सितंबर तक उसे दाखिल कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और एईआरओ के साथ बैठक कर एसआईआर के तहत दावा आपत्ति एवं सुनवाई की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने सुनवाई के दौरान टोकन सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू करने तथा वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती और छोटे बच्चों के साथ आने वाली महिला मतदाताओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने प्रत्येक दावा आपत्ति का निष्पक्षता से परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन में एक रूप सुनिश्चित करने के साथ शून्य अथवा कम फॉर्म 6 वाले मतदान केंद्रों पर पात्र युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयास करने को कहा है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता और अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामलों में अपराध अनुसंधान विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षा के मामले में दो अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जमशेदपुर के ऋतिक रोशन और रांची के पंकज प्रशन हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार मरीजों को समय पर सुरक्षित ब्लड उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल की है। सरकार ने एक कॉल में 4 घंटे के भीतर मरीजों तक ब्लड पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कल MS साइंस कंपनी के साथ MOU किया। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जहां से रक्त की मांग और आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।
6: वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लोगों को अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तो एक कॉल करेंगे वो और आपको ब्लड मिल जाएगा। ब्लड की दिक्कत अब नहीं होगी, बिल्कुल जांच के साथ ब्लड मिलेगा। उसका काम है कि वो हर जिले में कलेक्शन भी वही करेगा, कहाँ कलेक्शन करना है, नहीं करना है, किसके साथ करना है वो करेगा, टेस्टिंग भी वही करेगा।
3: रांची में झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में टेली स्टार्टअप कलेक्टिव रांची चैप्टर का कल आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 75 से अधिक स्टार्टअप फाउंडर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में निवेश, फंडिंग, व्यवसाय विस्तार और प्रभावी पिच तैयार करने से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों ने स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। धनबाद जिले के निरसा में कल पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में सागर नामक अपराधी को गोली लगी है। SSP प्रभात कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि बाहर से कुछ अपराधी धनबाद पहुंचे हैं और स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।
7: सूचना मिली थी बीच की, वहाँ पहुंचे पुलिस को देखते हैं, इसने फायर किया तो गोली लगने की सूचना है और वो इलाजरत है। जब बात करने की स्थिति में आएगा तब हम लोग डिटेल पता करेंगे। टोटल 5 लोगों की सूचना थी, 2 लोग पकड़ा गए हैं, 1 यहाँ इलाजरत है और 2 भागा हुआ है, जिसके लिए 3 लगे हुए। सब लोग जब एक बार पकड़ा जाते हैं डिटेल पूछताछ हो जाएगी, तब कोई कहानी समझ में आएगी। अभी तक इतना पता चल रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आएगी।
3: गुड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री समेत 10 देसी पिस्टल की बॉडी, 20 पिस्टल की पाइप, 22 मशीन पार्ट्स, 30 अदद पीतल रॉड सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मेन मिर्धा और गुलमुनि देवी के रूप में हुई है। और अब मौसम का हाल। राज्य में 20 सितंबर तक कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ गरज चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार आज दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिमी झारखंड समेत पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में बारिश हो सकती है। इधर कल हुई वज्रपात की घटना में राज्य के अलग अलग हिस्सों में 5 लोगों की मौत हो गई। लोहरदगा और गिरिडीह में 2-2 और पलामू में 1 व्यक्ति की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने PF के लिए बेसिक सैलरी लिमिट ₹25,000 किए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। इसके अलावा प्रभात खबर ने लिखा है झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौशल और तकनीकी शिक्षा में बढ़ेगी साझेदारी। दैनिक भास्कर ने ट्रेड वॉर पर लिखा है रूसी खरीद पर अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा, वोटिंग आज। हिंदुस्तान ने झीरम घाटी नक्सली हमले के 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। वहीं दैनिक जागरण ने JPSC घोटाले में रांची के पंकज प्रसून और जमशेदपुर के ऋतिक रोशन की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से एक महीने तक चलाएगी राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान। देशवासियों से एक दिया जलाने का किया आह्वान। झारखंड हाईकोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति मामले में जेएसएससी की ओर से बहस पूरी। सरकार 30 सितंबर को रखेगी अपना पक्ष। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षा घोटाला मामले में दो अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। राज्य सरकार ने मरीजों को 4 घंटे के भीतर सुरक्षित ब्लड उपलब्ध कराने के लिए एमएस साइंस कंपनी के साथ किया एमओयू। रांची में बनाया जाएगा कमांड सेंटर। और झारखंड में 20 सितंबर तक बादल छाए रहने और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। राज्य भर में कल वज्रपात से 5 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं सुप्रीता के साथ। बने रहिए आकाशवाणी रांची के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज हम सुनेंगे खोरठा भाषा में लोकगीत। कलाकार हैं सुकुमार और इनके साथी।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:47 हो रहे हैं। हम आरंभ कर रहे हैं कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे खोटा लोकगीत। हमारी आज की कलाकार हैं अनीता कुमारी और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आपने सुना खोरठा लोकगीत। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

अब हम आरंभ कर रहे हैं कार्यक्रम विविधा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम करेंगे चर्चा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पर और देंगे जानकारी विश्वकर्मा पूजा इस विषय पर। साथ ही आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी कारण लक्षण और उसके उपचार। आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम का और सबसे पहले करते हैं चर्चा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को श्रोताओं हर वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, WHO ने रोगी सुरक्षा को वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले अनावश्यक नुकसान को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया था। 17 सितंबर 2019 को पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसके बाद हर वर्ष इस दिन एक विशेष थीम के माध्यम से रोगी सुरक्षा के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे कि मरीज को सही पहचान के साथ सही उपचार देना, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले बीमारी का डायग्नोज होना बहुत मुश्किल है और जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी उसका सही इलाज भी नहीं हो पाएगा। दवाइयों की गलत मात्रा या गलत दवा से होने वाली घटनाओं को रोकना, अस्पतालों में संक्रमण को नियंत्रित करना, ऑपरेशन और अन्य प्रतिक्रियाओं को सुरक्षित बनाना, डॉक्टर नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बेहतर संवाद सुनिश्चित करना, मरीज और उसके परिवार को उपचार की जानकारी देना और निर्णयों में शामिल करना, चिकित्सा संबंधी गलतियों से सीखकर भविष्य में उन्हें रोकना, ये सारे मुख्य उद्देश्य हैं इस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को मनाने के पीछे। अब आइए ये जानते हैं कि रोगियों की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवा में छोटी सी गलती भी मरीज के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है, जैसे गलत मरीज की पहचान यानी गलत दवा यानी गलत उपचार और गलत उपचार यानी मरीज का नुकसान। इसलिए अस्पताल में मरीज की पहचान, दवा, जांच, ऑपरेशन, संक्रमण नियंत्रण और रिकॉर्ड रखने जैसी प्रत्येक प्रक्रिया में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। आपको ये बता दें श्रोताओं कि इस वर्ष यानी कि 2026 में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का फोकस नवजात शिशुओं और बच्चों की सुरक्षित देखभाल पर है। बच्चे और विशेष रूप से नवजात शिशु कई मामलों में वयस्कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए सुरक्षित प्रसव, नवजात की सही पहचान, संक्रमण की रोकथाम, दवाओं की सही मात्रा, टीकाकरण, पोषण, समय पर उपचार एवं माता पिता एवं स्वास्थ्य कर्मियों के बीच सही संवाद पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रोगी सुरक्षा केवल डॉक्टर या अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, मरीज और परिवार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी बीमारी और दवाओं के बारे में सही जानकारी मरीज के पास जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा सही तरीके से लेनी चाहिए। किसी दवा से एलर्जी हो तो पहले ही बता दें। उपचार या दवा को लेकर कोई संदेह हो तो प्रश्न पूछना है। अस्पताल में अपनी पहचान की पुष्टि अवश्य करें। सुरक्षित उपचार, स्वस्थ जीवन, रोगी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर ज...

श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर को। अब आइए करते हैं थोड़ी सी चर्चा विश्वकर्मा पूजा के विषय पर। श्रोताओं, विश्वकर्मा पूजा भगवान विश्वकर्मा को समर्पित एक पर्व है। हिंदू परंपरा में उन्हें देवताओं के

0: स्वर्गलोक, लंका, द्वारका और इंद्रपुरी जैसे स्थानों का उल्लेख मिलेगा अगर आप ढूंढेंगे तो। हालांकि इन विवरणों का आधार धार्मिक ग्रंथ और परंपराएं हैं, इसलिए इन्हें पौराणिक मान्यता के रूप में हमें मानना है। इस पूजा के पीछे मुख्य भावना है कि हमारे काम, औजार और निर्माण करने की क्षमता का सम्मान किया जाए। आज के दिन लोग भगवान विश्वकर्मा से उनके काम में सफलता मांगते हैं। मशीन और उपकरण सुरक्षित एवं सुचारू रूप से काम करें, कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं ना हो, व्यवसाय की उन्नति हो, कारीगरों और श्रमिकों को सम्मान और समृद्धि मिले, नई तकनीक और कौशल का सही उपयोग हो। और इस विश्वकर्मा पूजा की सबसे खास बात यह है ना श्रोताओं, कि इस दिन औजारों, मशीनों और कार्यस्थल की पूजा होती है। जैसे किसी किसान के लिए उसके कृषि उपकरण महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह इंजीनियर, मैकेनिक, बढ़ई, लोहार, कलाकार, मशीन ऑपरेटर और कारखाने में काम करने वालों के लिए उनके उपकरण उनके कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इस दिन लोग अपने औजार, मशीन, वाहन, कंप्यूटर, उपकरण और कार्यस्थल को साफ करके उनकी पूजा करते हैं। अपने काम के साधनों की देखभाल करें और उनका सुरक्षित तरीके से उपयोग करें। जी हाँ श्रोताओं, जो चीज़ आपके काम में आते हैं, आपको भी उनकी इज्जत करनी है, इस लिए आज के दिन हम उन चीज़ों की पूजा करते हैं। कार्यक्रम में आगे अब आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी, कारण, लक्षण और उसके उपचार। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर दिवाकर सिंह और भेंट करता हैं अवनीश कुमार सिन्हा।
1: आयोडीन या अकारक लवण, जो कि एक रासायनिक तत्व है, आयोडीन हमारे आहार में एक प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती हैं। दुनिया भर में प्रतिवर्ष लाखों बच्चे सीखने की कमजोर क्षमता के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी माताओं ने गर्भावस्था के दौरान भोजन में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं ली। आयोडीन की मदद से गर्दन के पास पाए जाने वाले थायराइड ग्रंथि विकास के लिए जरूरी हार्मोन पैदा करती है। इसी विषय को लेकर आज हम मिल रहे हैं सदर अस्पताल चाईबासा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिवाकर सिंह से, जिनसे हम बातें करेंगे आयोडीन से होने वाली बीमारियां, लक्षण एवं उपचार के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आयोडीन क्या है और हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है।
2: आयोडीन एक रसायन तत्व है जो शरीर के जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया है उसके लिए आवश्यक है। ये शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। श्वास लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक
1: जी,
2: सब कुछ बेहतर कार्य करे
1: जी,
2: यह आयोडीन पर निर्भर करता है
1: जी, जी।
2: जब आयोडीन का स्तर बहुत कम होता है तो नींद आने लगती है
1: जी।
2: मरीज ध्यान लगाकर काम नहीं कर सकता है। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द के साथ डिप्रेशन होने लगता है
1: जी।
2: कुल मिलाकर भले ही आयोडीन बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरी हो, लेकिन इसकी कमी शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचाती
1: है जी। तो डॉक्टर साहब, ये आयोडीन की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?
2: आयोडीन की कमी से अगर समय रहते आयोडीन की कमी का इलाज ना किया जाए तो इससे हार्ट संबंधी बीमारियां हो सकती है, जैसे हार्ट का बढ़ा हुआ आकार, हार्ट फेल हो जाना। वह इसकी कमी से महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है
1: जी, जी।
2: जैसे अवसाद और बांझपन
1: जी।
2: आयोडीन की कमी वाली महिलाओं के प्रेग्नेंट होने की संभावना 46% कम रहती है
1: जी, जी।
2: गर्भवती महिलाओं में थायराइड हार्मोन की कमी का असर बच्चे पर पड़ता है
1: जी।
2: नवजात जन्म से कमजोर होगा
1: जी।
2: वहीं गर्भपात होगा, मृत बच्चों का जन्म

0: और जन्म से ही होने वाली असमानताओं का जोखिम बढ़ जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो डॉक्टर साहब अगर हम में या किसी में आयोडीन की कमी है तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे?
0: और इसके लिए आयोडीन की कमी का पता लगाया जाता है जिसके लिए कुछ टेस्ट है, जैसे कि यूरिन और ब्लड टेस्ट
1: जी
0: से आयोडीन की कमी का पता लगाया जा सकता है। और एक और टेस्ट है आयोडीन पैच टेस्ट भी होता है, जिसमें डॉक्टर त्वचा पर आयोडीन के एक पैच पेंट करते हैं और जांचते हैं कि 24 घंटे के बाद यह कैसा दिखता है।
1: जी, तो इससे पता लग जाता है कि शरीर में आयोडीन की कमी
0: है।
1: जी, अगर किसी को कमी है तो उसके तो लक्षण भी दिखाई देंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है?
0: इसके लक्षण है गर्दन में सूजन
1: जी,
0: अचानक वजन बढ़ना, कमजोरी या थकान महसूस होना, बालों का झड़ना या कम हो जाना
1: जी,
0: याददाश्त कमजोर होना
1: जी,
0: गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं, मासिक धर्म की अनियमितता या मासिक धर्म में अधिक खून आना
1: जी, ये सभी आयोडीन की कमी से होते हैं।
0: कमी के लक्षण
1: जी। और भी कोई लक्षण सर?
0: इसके अलावा सूखी और परतदार त्वचा, सामान्य से अधिक ठंड लगना और असमान धड़कन भी इसकी कमी के संकेत होते हैं
1: जी। और कुछ बच्चों वगैरह में?
0: और बच्चों में आयोडीन की कमी मानसिक विकलांगता का कारण होती है।
1: तो बहुत बड़ी बात है सर।
0: दांतों का विकास नहीं होता है और मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चा मन बुद्धि की तरफ बर्ताव करेगा।
1: ये अगर लक्षण है डॉक्टर साहब, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इस लक्षण को विस्तार पूर्वक बताइए।
0: शरीर में आयोडीन की कमी से जो होता है उसमें गर्दन में सूजन
1: जी,
0: गर्दन में सूजन, गर्दन के आगे वाले हिस्से में सूजन होना
1: जी जी जी,
0: ये आम और सबसे खास लक्षण है
1: जी जी। इसमें क्या क्या किस तरह से दिखाई पड़ेगा?
0: यह लक्षण घेंघा रोग
1: जी
0: या फिर थायराइड की ग्रंथि बड़ी होने की वजह से ही दिखता है
1: जी।
0: दरअसल हमारे गर्दन के आगे वाले हिस्से में तितली के आकार का एक ग्रंथि होती है
1: जी।
0: यह थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH से संकेत प्राप्त करके शरीर में थायराइड हार्मोन बनाता है
1: जी।
0: जब हमारे शरीर में TSH का स्तर बढ़ता है तो थायराइड ग्रंथि जो है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करती है
1: जी।
0: ऐसे में जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है
1: जी,
0: तो यह थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है
1: जी।
0: शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करके इस परेशानी को दूर किया जा सकता है।
1: यानी कि जो घेंघा रोग हो जाता है गर्दन में, मतलब कि जो फूल जाता है, वो आयोडीन की कमी से,
0: आयोडीन की कमी से
1: जी। और दूसरा क्या है सर? और
0: दूसरा है वजन बढ़ना
1: जी।
0: शरीर में यह लक्षण तब दिखते हैं जब शरीर में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए पर्याप्त आयोडीन ना हो
1: जी।
0: दरअसल थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म की गति को नियंत्रित करते हैं
1: जी।
0: यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा और गर्मी में परिवर्तित कर देता है
1: जी।
0: जब शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर कम होता है तो हमारा शरीर कैलोरी बर्न करने में सक्षम नहीं हो पाता
1: जी,
0: जिसके कारण शरीर में मोटापा बढ़ जाता है
1: जी। जी जी, यानी कि मोटापा भी एक कारण है आयोडीन की कमी।
0: हाँ जी। उसके बाद थकान और कमजोरी होना
1: जी।
0: शरीर में आयोडीन की कमी से समान लक्षणों में थकान और कमजोरी को भी शामिल किया जा सकता है
1: जी।
0: जिन लोगों के शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर होने के साथ साथ आयोडीन की कमी रहती है
1: जी,
0: उन्हें थकान और कमजोरी अधिक महसूस होती है
1: जी।
0: व्यक्ति में यह लक्षण तब नजर आते हैं जब हमारे शरीर का हार्मोन स्तर कम होने की वजह से शरीर पर्याप्त रूप से ऊर्जा नहीं बना पाता
1: और हम लोग थकान महसूस करने लगते
0: हैं। और हम लोग थकान महसूस करते
1: जी,
0: जी। चौथा लक्षण है बालों का झड़ना
1: जी। जी जी,
0: हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन बालों के रोम छिद्रों के विकास को नियंत्रित करते हैं
1: जी।
0: जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बालों के रोम छिद्रों का विकास काफी तेजी से होता है
1: जी।
0: इस स्थिति में आपको बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि शरीर में आयोडीन की कमी से आपके बाल झड़ रहे हैं
1: जी। जी
0: है ड्राई और परतदार स्किन
1: जी। इसमें मतलब कि शरीर में ये जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है,
0: ड्राई हो जाता है, सूख जाता
1: जी,
0: है। शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर जब कम होता है तो व्यक्ति का स्किन सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और परतदार नजर आता है और सामान्य से अधिक ठंड लगना, ये भी एक लक्षण है।
1: अच्छा, मतलब कि अगर ठंड हमें ज्यादा लग रहा है, मतलब कि
0: ठंड के दिन,
1: ठंड के दिन
0: जितना नॉर्मल आदमी को ठंड लगता है उससे ज्यादा ठंड लगेगा
1: जी जी, तो जी
0: मरीज आएगा बोलेगा कि हमको बहुत ठंडा लग रहा है
1: जी।
0: तो जब हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से थायराइड हार्मोन नहीं होता है
1: जी,
0: तो आपका स्किन ज्यादा संवेदनशील हो जाता है
1: जी, जी, जी।
0: इस स्थिति में आपको ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्म लगने की परेशानी हो सकती है
1: जी, जी।
0: साथ ही यह आपके पाचन क्रिया को भी धीमा कर देता है
1: जी।
0: जिसके कारण आपके शरीर में कम गर्मी उत्पन्न होती है
1: जी।
0: इसकी वजह से आपको सामान्य से अधिक ठंड लगती है। थायराइड हार्मोन को सुधारने के लिए आप आयोडीन के साथ साथ भूरे रंग के फैट को भी शामिल कर सकते हैं,
1: मतलब कि भोजन में। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि ये लक्षण तो हैं, अगर दिखाई पड़े तो वो तो डॉक्टर से संपर्क करें ही, साथ ही हम ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि इसका आखिर उपचार क्या है, कैसे इसको दूर किया जाए।
0: इसके उपचार के लिए खाने में
1: जी जी
0: मछली, अंडे, मेवे, मीट, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट
1: जी जी
0: और समुद्री शैवाल
1: जी,
0: ये सब कुछ ऐसे खास पदार्थ हैं जिसे में प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है
1: जी।
0: यदि आहार से पर्याप्त आयोडीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है
1: जी,
0: तो डॉक्टर इसके लिए सप्लीमेंट की सलाह देते हैं। जैसे आयोडीन नमक इसका एक तरीका है
1: जी,
0: आयोडाइज्ड नमक
1: जी जी जी, जी। यानी कि खान पान से हम तो अपने आयोडीन के स्तर को बढ़ा सकते हैं और आयोडीन युक्त नमक जो है वो बहुत जरूरी है, तो इसे अपने खाने में शामिल करना चाहिए जी। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आयोडीन की समस्या जो है
1: जी,
0: अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया गया
1: जी,
0: तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं, जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है
1: जी।
0: इसीलिए और खासकर गर्भवती महिलाओं को
1: जी जी जी
0: इसका सेवन बहुत ही आवश्यक है
1: जी।
0: इससे ना केवल इसकी कमी से ना केवल माँ बल्कि बच्चे को भी समस्याओं का सामना करना होता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को आयोडीन से होने वाली बीमारी, लक्षण एवं उपचार के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी, कारण, लक्षण और उसके उपचार। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिवाकर सिंह और उनसे बातें कर रहे थे अवनीश कुमार सिन्हा।

श्रोताओं, इन्हीं जानकारियों के साथ आज का कार्यक्रम विविधा यही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। अब हम आरंभ करने जा रहे हैं कार्यक्रम रसरंजन। इस कार्यक्रम का सबसे पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साजन चले ससुराल से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: अभी आपने सुना मुसाफिर फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं ये ज़रूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1444999 या 1800345406 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे आवारापन फिल्म का गाना, आवाज़ मुस्तफ़ा की थी। कार्यक्रम का अगला गाना ये सुनते हैं फिल्म बाजीगर से आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज़ में।

शतायनी गीतों के साथ। ये गाना अभी आप सुन रहे थे फिल्म और प्यार हो गया से, आवाज़ उदित नारायण की थी। और इन्हीं गीतों के साथ हम आज का कार्यक्रम रस रंजन यही समाप्त कर रहे हैं। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। 10 बजे से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी, पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन, निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर, तहसील खोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में। ऐसे जंगल जहां पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियां हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए। यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा। वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ। जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं

सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবীর সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल।

0: चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন আরম্ভ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था, इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

0: the most effectively. Our announced partnership with Tata Electronics is a very important milestone. ASML will support Tata, Tata's upcoming 300-millimeter fab in Dholera, and we are highly committed to supporting its semiconductor manufacturing roadmap with our holistic lithography product solutions. ASML is committed to teaming up with India and actively contributing to its long-term semiconductor manufacturing ambitions, as stated in SEMICON 2.0. Together, we can build the capabilities, partnerships, and innovative ecosystem needed to turn India's enormous potential into lasting progress. I look forward to our collaboration, and thank you.
1: ग्लोबल पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करते हुए एएसएमएल से आमंत्रित प्रतिनिधि और वक्ता ने गुजरात में चल रहे अपने प्रोजेक्ट्स की बात की, साथ ही टाटा इंडस्ट्रीज के साथ जो साझेदारी में कार्य किया जा रहा है उसका उल्लेख भी किया। हम आपको बताएं कि इस समय यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आज उद्घाटन सत्र चल रहा है। 3 दिन तक ये आयोजन चलेगा और इस वर्ष की थीम है सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम, यानी हम किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम, एक व्यवस्था जो है उसे विकसित कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो देश हैं, अन्य देश जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी साझेदारी है और इस समय इस आयोजन में विदेशी प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन, यानी 6 देशों के प्रतिनिधि यहां पर हैं और भारत के विभिन्न राज्यों के बूथ, स्टार्टअप मंडप, नवाचार इस दौरान प्रदर्शनी के रूप में विभिन्न लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं कि क्या कार्य भारत में हो रहा है और किस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे।
2: Yes, indeed. And as we mentioned earlier, that Shri Ashwini Vaishnav, the Minister for Electronics and Information Technology.
3: श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। हम सब मिलके माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, सेमिकॉन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश के कई कई दशकों तक विकास के लिए जरूरी है। फॉर मेनी डेकेड्स इंडिया वॉन्टेड टू हैव अ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, बट ओनली under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we could build this foundation of the foundational industry. In the Semicon 1.0, we could make that beginning. We started with a very measured and a very calibrated program, the program which was focused on making sure that the industry can set the base in our country. And the focus was very much on getting the right talent, making sure that the ecosystem builds in our country. That was the beginning. That is the foundation we have been able to lay in the first 12 years of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's leadership of this country. Now we have to build the building over this foundation. I'll talk very briefly about the next round of Semicon, the Semicon 2.0. Semicon 2.0 will build the semiconductor industry over 6 pillars. Pillar number 1 is design. Semicon 1.0 mein we had lots of startups trying to see how we can design the chips. We had good success. More than 105 startups could participate in it, and about 20 of them got VC funding of about 800 crore rupees. But that was just the beginning. This time our ambition is much bigger. We would be targeting at least 200 startups and companies which design chips in India across the spectrum of semiconductor requirements. pillar number two is machines and materials. We have so many ecosystem partners present here, and I'm very happy to see more than 28 countries participating in this conference today. Every aspect, whether it is capital equipment, whether it is maintenance facilities, whether it is chemicals, whether it is gases, every part of the ecosystem is part of the Semicon 2.0. And that's where I recall 5 years ago when we started this program, Prime Minister very clearly told us, guided us, don't think short term, think long term. Don't think fab, think ecosystem. And that is what has continuously guided us in this program. And that is reflected in the way we have designed the entire Semicon 2.0. Semicon 2.0, the second pillar will be machines and materials. And I thank Prabhu for announcing the $5 billion investment that you have announced. This will go a long way in generating employment in our country. Pillar 3 will be more display, memory, silicon, compound and logic fabs. More the merrier. The ecosystem runs over that, builds over that. That has the multiplier impact. Pillar 4 will be more advanced packaging units. We already have a 3D packaging unit coming up in Odisha. We would like to have much more progress in the advanced packaging because that is a very important part of the entire value chain. Pillar 5 will be research and development. This time we'll take up projects where some really cutting edge industry required R&D can be taken up. And this will be fully driven by the industry and academia, absolutely working in harmony, in synchronization. It won't be a isolated kind of R&D, it will be very applied kind of R&D that we would be looking at. And I'll request the industry participants present here to suggest the projects that you would like to take up. We have very strong academia in our country, very strong base we have. We would like to present that to you. The pillar 6 is about talent. In the Semicon 1.0, we promised that we will train 85,000 design engineers over a period of 10 years. Happy to report that in 4 years itself, we have been able to train 70,000 design engineers. And many of those students today presented their chips to Honorable Prime Minister. And not just the big cities, throughout the country, from Rourkela to Jammu, to Puducherry, to Meghalaya, every part of the country today, more than 400 universities have world's latest EDA tools from Cadence, from Siemens, from Synopsys. All these EDA tools are today available to the students. They are designing their chips. They are converting their ideas to real practical projects. And we are using a semiconductor laboratory at Mohali for taping out those chips and making sure that the student gets the confidence from idea to execution. And it's a rare capability. I thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. You gave that vision to us. You gave that target of absolutely industry-oriented talent development, and we have been able to deliver on that. And in Semicon 2.0, we will take a big task for developing the technician talent, the clean room talent, the factory floor talent, and we will be targeting 100,000, 1 lakh talent to be developed, which will straight away be employed in the factories which are coming up in India, and it will be a global pool of talent which will be available. So that will be a very big goal for us in the Semicon 2.0. This is a long journey. We have taken the first step. We are now taking the second step. We have built the foundation, and this is what is going to be the foundation and the journey which takes us to develop nation, Viksit Bharat. Thank you very much, friends. Bharat Mata Ki. Yeah. Bharat.
2: That was the Union Minister for Electronics and Information Technology, Information and Broadcasting and Railways, Sri Ashwini Vaishnav, who mentioned about the Honorable Prime Minister's vision of Semicon 2.0, and that is going to be built on six pillars, and those pillars are designing machines and materials, more display, more advanced packaging units, cutting-edge industry-required research and development and talent. And Neelam, as we know that industry is also going ahead, racing ahead to Industry 4.0, so this augurs really well for our young talent pool. And the minister mentioned that the investments that have been promised by the various leading global semicon industry players, they are going to make India indeed a global powerhouse, and it will have a multiplier effect in having more advanced technologies, as well as it will create huge, huge employment opportunities for the youth of India.
1: जी बिल्कुल. और अब जो चिप है उसे हम ये नहीं कह सकते कि एक छोटा सा उपकरण है जो किसी एक खास क्षेत्र तक सीमित है. ये कारों से लेकर ड्रोन्स तक, विमानों तक, एमआरआई मशीनों तक, उपग्रहों तक, सभी में लगा होता है. और माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा इस समय यहाँ पर एक औपचारिक अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है यहाँ पर. और CDIL
2: Semiconductors plant has been inaugurated, and also the Shuchi Semicon, and this is a virtual inauguration by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
1: Ji, aur jo upasthit jan samuh hai is samay Kartal Dhwani se is pal ka swagat karta hua, yahan par chhaviyan dikhai ja rahi hain alag alag in kshetron se judi hui, aur is tarah se Semicon 2026 ka udghatan satr jo hai bahut kuch apne aap mein samete hue hai, aur sath hi hame ye batata hua ki semiconductor jo है वो एक तरह से अब बुनियादी उद्योग बन गया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल से लेकर स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र तक लगभग हर बड़ा उद्योग चिप्स पर निर्भर करता है, और चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकले उत्पादों पर निर्भर करता है. इस वजह से जितना सेमीकॉन इंडस्ट्री जो है वो मजबूत होगी, उसका विस्तार होगा, उतना ही उससे जुड़े हुए उद्योग भी उभरते रहेंगे और वो भी सशक्त होते रहेंगे. और हम क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चिप से भला हम कैसे दूर रह सकते हैं जो कि हमारे हर उपकरण का हिस्सा अब होने जा रही है. हम सिर्फ मोबाइल की चिप एक छोटी सी जानते हैं, लेकिन अब चिप हर उपकरण में शामिल. और यहां एक तरह से अभिनंदन किया जा रहा है, आभार प्रकट किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का.
2: एंड अ मेमेंटो हैज बीन प्रेजेंटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव. एंड एज यू राइटली मेंशन नीलम, दैट दिस इज इंडीड अ वॉटरशेड मोमेंट फॉर इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, बिकॉज द India built chips are really going to play a leading role in the world of semiconductors, and that is what everything is now based on, these small chips which are part of our mobile, our television, even our transportation ecosystem.
1: जी बिल्कुल. और मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, साथ ही निवेश का हब बनाने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का देश को, इसने एक पूरा इस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया है, एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसमें अब निवेश भी आकर्षित कर रहे हैं हम, लेकिन साथ ही जिन क्षेत्रों में पहले हम सिर्फ आयात करते थे उपकरण, उन क्षेत्रों में अब हम निर्यातक बनकर उभर रहे हैं, अब हम निर्यात भी करते हैं. और ऐसे में सेमीकॉन की एक पूरी तैयार करने का जो प्रयास है उसमें अब सिर्फ चिप निर्माण नहीं है, बल्कि चिप डिजाइन से लेकर पैकेजिंग, टेस्टिंग, मशीनरी का निर्माण करना, कच्चा माल देश से ही प्राप्त करना, और साथ ही कुशल कर्मचारी तैयार करना, ऐसे इंजीनियर्स तैयार करना, और जो स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से उनको उभरने का अवसर देना, स्टार्टअप से वो यूनिकॉर्न बने और यूनिकॉर्न से वो ऐसी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री बने, एक ऐसा उद्योग बने जो निर्यात शुरू करे, ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं साथ. और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हमें छोटा लक्ष्य नहीं रखना है, हमें बड़े लक्ष्य बनाने हैं, और उस दिशा में हमें प्रयास भी करना है. और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि भारत को

0: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड एज द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव मेंशन, एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी।
2: थैंक यू। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जितिन प्रसाद जी, उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज, डेलीगेट्स और वर्चुअली हमारे साथ सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के भारत के भविष्य ऐसे मेरे नौजवान साथियों, यहां उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए उत्साहित नौजवानों, देवी और सज्जनों, सेमिकॉन इंडिया का ये पांचवा एडिशन हो रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो अतिथि आए हैं, मैं उनका भारत में विशेष स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। और संयोग देखिए, आज से ही सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है। फ्रेंड्स, विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है। अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15 दिनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, तो अंदाजा लगता है कि भारत किस दिशा में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सितंबर में ठीक 10 दिन पहले मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बस पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने

1.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है, और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की, सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है। साथियों, भारत की इन उपलब्धियों के बीच सेमिकॉन इंडिया का यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदलता गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी, इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइन से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की, कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है, और अभी अभी मोहाली और सूरत में 2 और प्लांट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बनाने में दशकों लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं, वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है। लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स, आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं। आप
हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है। और भारत भी यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप्स के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है। और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। एक बार मुझे अमेरिका की एक कंपनी के सज्जन मिलने आए थे, तो बोले हमारे यहां अगर इंजीनियर्स के लिए भर्ती करना चाहें, उनको बुलाएं,
तो एक कमरे में आ जाए, इतने लोग आते हैं, और बोले हिंदुस्तान में बुलाए तो फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाता है। ये ताकत है भारत की। और साथियों, चीप डिजाइनिंग के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर स्किलिंग का काम चल रहा है। अभी मुझे यहां आने से पहले यहीं पर कैंपस में इंडस्ट्री से जुड़े कुछ युवा साथियों से मैंने मुलाकात भी की है, सारे स्टूडेंट्स से। इन स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी डिजाइन की गई चिप्स उपहार में दी है। हमारी सरकार 1,00,000 इंजीनियरिंग छात्रों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अभी आपको बताया गया, इसमें से 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी भी दे चुके हैं हम लोग। इतना बड़ा टैलेंट पूल आप सभी के लिए भी एक तरह से गोल्ड माइन से कम नहीं है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट्स भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आएं, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें। इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी। साथियों, आगे बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। सालों तक आपकी इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिस्टर की साइज की बात करते थे, जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे हुए, कंप्यूटिंग उतनी ही फास्ट और एफिशिएंट होती गई। आज भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। बीते 2 वर्षों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही है, और इस ग्रोथ में बहुत बड़ा AI से पैदा हुई डिमांड का है। यानी आज अगर आप AI पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि चिप के अंदर क्या है, बल्कि चुनौती ये भी है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेमोरी को प्रोसेसर के और करीब लगाना हो, कई सारी चिप्स को इस तरह जोड़ना हो कि वे मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करें, बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने

0: एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। एआई के लिए जो चिप बन रही हैं उनका इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां हैं वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है, 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड्स, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कुछ वर्ष पहले ही हमारे संविधान को 75 साल हुए हैं। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने है और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, was addressing the inaugural session of Semicon India 2026, and the Honorable Prime Minister received a standing ovation from the people and the delegates who are assembled at Yashobhumi. The Honorable Prime Minister in his speech mentioned that the month of September started on a very positive note for India, with the recording of 7.8% growth rate in the first quarter of 2026. The Prime Minister also mentioned that India is committed to inclusive financial freedom of its citizens. This month also saw the completion of 3,000 kilometers of dedicated freight corridor. Japanese credit agency have upgraded India's sovereign credit rating, and now the world trusts India as a success story. He called upon the global giants of the semiconductor industry to partner with OCI companies, as they will be equal partners of the journey towards a Viksit Bharat. The Honorable Prime Minister also mentioned that India has consistently reiterated its position on resilient global supply chains. The Prime Minister said that there are huge opportunities available in India for chemical, gases and materials industry, as India also has a huge talent pool of science, technology, engineering and mathematics. The Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, called upon the youth of India to come forward in research and development in semiconductor and showcase their Yuva Shakti. The global semiconductor market grew by 20% in the last decade due to AI, and India is now ready to offer new and trusted locations for the industry. And India is also ready to take on the emerging responsibilities. The Prime Minister mentioned that more than 160 gigawatt of solar power has been achieved by India. India is also using nuclear energy and it has been open to private players. India is consistently now working on small modular reactors. India is the mother of democracy, and we celebrated very recently the 75 years of our constitution. The Prime Minister said that weaponization of supply chains should not be allowed, and he called upon the semiconductor industry to play a constructive role in global growth and development towards world peace.
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया, और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया, विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी, और साथ ही सितंबर के माह में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं भारत में उनका उल्लेख किया, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन का उल्लेख था, समावेशी वित्त का उल्लेख आपने किया, ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का उल्लेख किया, और ये कहा कि देश पर दुनिया के देशों का भरोसा अब बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ऐसे में भारत की बनाई हुई चिप जो है वो दुनिया तक पहुंच रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी देश को प्रेरित करते रहे हैं मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए, फिर मेड फॉर द वर्ल्ड का उल्लेख आपने किया, वोकल फॉर लोकल हमें कहा तो लोकल टू ग्लोबल भी कहा, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए अपने लोकतंत्र के मूल्यों को हम बचाए रखें लेकिन साथ ही आधुनिकता का हाथ भी थामें और इस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुनके पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते रहे हैं, और इसी तरह का प्रेरणा देने वाला आज का ये आयोजन यशोभूमि में जो शुरू हुआ, आज इसका उद्घाटन हुआ है और अगले तीन दिनों तक ये आयोजन चलेगा। आप आयोजन के उद्घाटन सत्र का विवरण आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। लाइव प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी अनुपम हरियाणवी के साथ मैं नीलम मलकानी, अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक रॉय।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: बहनों नमस्कार। जिस हाथ में हुनर बसता है वह हाथ कभी खाली नहीं, जिस माथे पर शम की बूंदे हो उससे सुंदर कोई लाली नहीं।
2: हे देव शिल्पी विश्वकर्मा, आपको शत शत नमन हमारा। औजारों में शक्ति भरे आप, हर शिल्पकार को मिले सहारा।
1: सखियों, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज के इस सुहाने सफर में हम दो सखियां हैं शिल्पी, और हमारे संग मिठास लिए हैं हमारी प्यारी सखी मधु।
2: सही कहा तुमने शिल्पी। वैसे हमारी बहनें भी इस विशेष दिन की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना से की होंगी।
1: बिल्कुल, वैसे भी हमारे देश में सदियों से शिल्प की समृद्ध परंपरा रही है। विश्वकर्मा पूजा हमें याद दिलाती है कि श्रम का सम्मान ही सच्ची पूजा है।
2: सखियों, हम बात करें मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार की, लोहे को तपाकर आकार देने वाले लोहार की, चाहे लकड़ी पर नक्काशी कसने वाले बढ़ई हो, हर शिल्पकार अपने हाथों से भारतीय संस्कृति को संवारता है और गढ़ता है, तथा ये सभी हमारी परंपराओं को संजो कर रखने वाले कलाकार भाई बहने हैं।
1: बिल्कुल, शिल्प शास्त्र केवल सुंदर वस्तुएं बनाने की कला नहीं है बहनों, बल्कि ज्ञान, कौशल, माप, संतुलन, रचनात्मकता और उपयोगिता का मेल है।
2: सखियों, जब हम किसी विशेष मंदिर का दर्शन करते हैं तो उसकी नक्काशी कलाकारों के हुनर से प्रभावित होते हैं। बात दक्षिण भारत की मीनाक्षी मंदिर की करें या रामेश्वर के से कन्याकुमारी तक की, सभी मंदिर इससे प्रभावित होते हैं।
1: बिल्कुल मधु, तुमने रामेश्वरम की बात की तो उसकी कलाकारी से भला कौन ऐसा आदमी नहीं है जो कि मोहित नहीं होता है। सखियों, मान्यता है कि शिल्पकारों के ने देवताओं के लिए भी अनेक भवन, भव्य भवनों, नगरों और दिव्य अस्त्र शास्त्रों का भी निर्माण किया है।
2: सखियों, विश्वकर्मा पूजा केवल औजारों की पूजा का दिन नहीं है, यह श्रम, हुनर, कलाकारों के कर्म के सम्मान का भी पर्व है।
1: बिल्कुल मधु, एक कलाकार जब अपने हुनर को आकार देता है बहनों, तो उसकी गृहस्थी चलती है, अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना और उनके प्रति मन में अच्छी भावना होनी चाहिए। मधु, हमने हमेशा इस बात को हम कहते हैं कि हुनर को हमेशा अच्छे से मापना चाहिए। हमारे जो स्थानीय भाई बहनों हैं, किसी मेले में, किसी हाट में सामान को लाते हैं, तो उनकी खरीदारी को हमें जरूर करनी चाहिए।
2: कितनी गहरी बात कही तुमने। सखियों, जिस हाथ से हुनर है वह केवल वस्तु नहीं बनाता, वह भविष्य का निर्माण भी करता है। आज का दिन और भगवान विश्वकर्मा हमें सिखाते हैं कि सृजन करने वाला हर हाथ सम्मान का अधिकारी है।
1: हर औजार के पीछे एक कहानी होती है बहनों, कहानी होती है मेहनत की, उम्मीद की और आत्मनिर्भरता की। शिल्पी हमारी संस्कृति की पहचान है और शिल्पकार सच्चे वाहक हैं।
2: विश्वकर्मा पूजा हमें अपने पारंपरिक हुनर को बचाने, संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश देती है।
1: सखियों, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, ईमानदारी, लगन और कुशलता हर काम को महान बनाती है। इसलिए बहनों, आपके अंदर जो भी हुनर हो उसे निखार कर अपनी पहचान बनाइए, तथा भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, जिस राज्य की जो भी कला है, उसे जीवंत बनाए रखिए।
2: सखियों, हाथों में हुनर हो तो राह निकल जाती है, मेहनत की बूंदों से तकदीर बदल जाती
1: है। वाह, क्या बात कही मधु। भले ही आज काम करने का तरीका थोड़ा बदल गया है बहनों, नई मशीनें आ गई हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि तकनीक चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, उसे सही दिशा देने के लिए ज्ञान और कुशल हाथों की आवश्यकता हमेशा पड़ती है।
2: सखियों, अपने घरों में और कार्यस्थल पर औजारों की अच्छे से सफाई करें और उनकी पूजा आज करें।
1: हाँ हाँ मधु, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनके हाथ में हुनर है, वो निपुण हैं, कोई सिलाई सेंटर चलाती हैं, कोई छोटे छोटे कुटीर उद्योग को संभालती हैं, तो वे इस परंपरा को जीवंत रखें और अपने संग और महिलाओं को भी जोड़ें, ताकि सबके हाथ में रोजगार हो, सबकी अपनी पहचान हो।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पुनः स्वागत है सखियों आप सभी का। कार्यक्रम है गृहलक्ष्मी और आज आपके साथ हैं शिल्पी और मधु।
4: और बहनों, आज का दिन है संजीवनी के लिए। संजीवनी में हम लेकर आते हैं स्वास्थ्य संबंधित बातें। तो बहनों, आज का विषय है गर्भावस्था और उनसे जुड़ी समस्याएं। भेंट वार्ताकार यानी आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर स्मृति रॉय और भेंट करता है हमारे रेडियो सखी सुभाषिनी। तो आइए सुनते हैं ये उन बातचीत।
3: एक महिला के जीवन में माँ बनना सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण पल होता है। एक जीवन को दुनिया में लाना जहाँ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है, वहीं महिला का शरीर कई तरह की शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरता है। गर्भावस्था के दौरान क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कौन सी आम समस्याएं हैं, कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम जानेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्मृति राज, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर स्मृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
5: धन्यवाद। नमस्कार
3: डॉक्टर स्मृति। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब एक महिला माँ बनती है तो ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती जो उनके 3 महीने होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उस समय उन्हें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कैसा उनका खान पान होना चाहिए, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि माँ बनने से पहले क्या तैयारी होना चाहिए। जब महिला जब माँ बनती है, माँ बनने की सोचती है, उस टाइम उसे क्या तैयारी करनी चाहिए।
5: जनरली हम जब किसी कपल का काउंसलिंग करते हैं या फिर कपल हमारे पास आते हैं कि अब हम फैमिली प्लानिंग सोच रहे हैं, तो फॉलिक एसिड लेने के लिए बोलते हैं। ये एक फॉलिक एसिड एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है जो बच्चों में

0: लेना
1: जी
0: एक अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर बताते हैं कि कब करना है वो करवाना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।
1: जी
0: 3 महीने बीत जाने के बाद उनके खान पान पे, उनका जो दिनचर्या है, या फिर भारी काम नहीं करना, फिर अपना मानसिक तनाव से दूर
1: जी
0: रहना,
1: जी जी
0: ठीक है, घर में स्ट्रेस नहीं लेना, ये सब महिलाओं को ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा उन्हें वॉक करना चाहिए, तो बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल उठते हैं कि गर्भावस्था के दौरान क्या एक्सरसाइज और योगा वगैरह करना चाहिए?
0: हाँ, प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा व्यायाम और शारीरिक गतिविधि को करने के लिए एनकरेज किया जाता है।
1: जी
0: इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और नॉर्मल प्रसव के भी चांसेस बढ़ते हैं।
1: जी
0: इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जो नॉर्मल प्रसव जो है वो सबसे बेटर होता है एक महिला के लिए। तो अगर वो नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि अपना कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ही अच्छे रहते
1: बढ़
0: हैं।
1: जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि जो शुरू के 3 महीने रहते हैं उन महिलाओं को अपना खान पान या जो भी दवाइयां हैं या डॉक्टर्स ने जो सलाह दिए हैं उन्हें मानना जरूरी है, और साथ ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है, तो ऐसे में जो उनके जो घर वाले हैं या घर में बाकी सदस्य हैं उनका क्या रोल हो जाता है?
0: गर्भवती महिला के परिवार को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के पर खास ध्यान देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि गर्भवती महिला पौष्टिक आहार लें, भारी काम नहीं करें, उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिले, समय समय पर उन्हें डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए ले जाया जाए, साथ ही उन्हें स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट और इमोशनल सपोर्ट दिया जाए।
1: जी बहुत बढ़िया। और गर्भावस्था के दौरान मूड स्विंग होना या फिर ऐसी बहुत सी आम समस्याएं हैं, तो ऐसे में क्या मतलब वो कर सकती हैं या कौन से प्रिकॉशन वो ले सकती हैं, क्या सावधानियां बरत सकती हैं, उनसे वो किस तरह से निपट सकती हैं या उनको कम कर सकती हैं?
0: देखिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उल्टी और मितली
1: हाँ
0: होना,
1: जी जी
0: सीने में जलन, अपच, कमर दर्द, पांव का खिंचना, कमजोरी और मूड चेंजर चेंजर जो आप मूड स्विंग्स के बारे बोल रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो गर्भावस्था के समय ये बहुत कॉमन है। साथ ही मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि शुगर, बीपी, अनीमिया, इन्फेक्शंस, ये सब भी हो सकते हैं। तो पेशेंट्स क्या प्रेग्नेंट पेशेंट्स पेशेंट्स नहीं होते हैं, वो एक नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ का हर औरत को इससे गुजरना है,
1: बिल्कुल
0: तो इसको हम लोग पेशेंट या मरीज नहीं बोलते हैं। ये एक हमारे लिए महिला है जो कि गर्भवती है,
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना, तो उसको अपने पे भी ध्यान देना है और अपने बच्चे पे भी ध्यान देना है। एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन हम अपने पेशेंट्स को मानसिक तनाव लेने से मना करते हैं, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही
1: अच्छा
0: मिसकैरेज के भी चांसेस उससे बढ़ते हैं,
1: जी
0: बीपी भी बढ़ सकता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। तो इसके लिए गर्भावस्था में संतुलित पौष्टिक आहार लेने के लिए बोला जाता है, नियमित समय पर खाना खाना जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज, प्रोटीन के स्रोत जैसे दाल हो गया, सोयाबीन, अंडा, दही, इन सबको सम्मिलित करने के लिए कहा जाता है। और किसी भी महिला को खाली पेट रहने के लिए नहीं कहते हैं, थोड़े थोड़े अंतराल पे छोटी छोटी कुछ कुछ खुराक लेते रहना
1: लेते
0: चाहिए।
1: रहना
0: साथ
1: चाहिए।
0: डॉक्टर जो मेडिसिन बोलते हैं, जो दवाइयां बोला जाता है, वो प्रेगनेंसी में उसका डिफिशियंसी हो जाता है, जिसके कारण कि हम आयरन, कैल्शियम, ये सबको सप्लीमेंट्स देते हैं। इसलिए पेशेंट्स को खुद पे भी ध्यान देना है, अपने साथ पल रहे बच्चे का भी ध्यान देना है, ताकि उससे जच्चा और बच्चा दोनों सही
1: दोनों
0: रहे।
1: स्वस्थ रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी सावधानियां हैं उन्हें रखनी चाहिए और खान पान पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से लक्षण को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए या उस पर नजर रखनी चाहिए जिन्हें देखते ही महिला को बिना देरी किए हॉस्पिटल भागना चाहिए?
0: गर्भावस्था के समय पहला ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो, या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, अगर उनको किसी भी तरह का ब्लीडिंग दिखता है, रक्त स्राव या पानी जैसा कुछ भी गिरना, पेट में दर्द होना, तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से, ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए
1: जी।
0: अगर उनको लगता है, या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स अगर पेशेंट को सिर दर्द होता है, चक्कर आ रहा है, या फिर आंख के सामने अचानक से अंधेरा छा

0: ज्यादा है, ये सब लक्षण है बीपी बढ़ने का। ठीक है, तो
1: अच्छा
0: इन सब के ये सब लक्षण दिखते ही तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
1: जी। और आजकल नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम देखने को मिलती है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?
0: नॉर्मल डिलीवरी कम होने के कारण तो बहुत सारे हैं, बट है कि पहला है कि अभी जो स्थिति है जिसमें कि जैसे बच्चों को रेज किया जा रहा है, पहले क्या होता था कि जो हमारी माएं थीं या फिर दादी नानी जो भी थी, वो अपने सारे काम करते हुए
1: जी
0: अपने इस गर्भावस्था को भी रखती थी और डिलीवरी भी होती थी तो नॉर्मल हो जाती थी।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव रहती थी और उनका काम मोस्टली जो था घर का काम था और खेतों में काम करना था।
1: बिल्कुल, यानी
0: ठीक है,
1: हमारी जीवन शैली आज
0: जीवन
1: की
0: शैली
1: वैसी है।
0: के कारण, हाँ, जैसे कि अभी
1: बिल्कुल
0: सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है वो चलन में है, क्योंकि गर्ल्स विमेन जो है वो भी अब वर्किंग है,
1: जी
0: तो मानिए कि हम हैं आप हैं, ठीक है, हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग तो खेत में काम करने नहीं
1: नहीं
0: जाते हैं। ठीक है, तो
1: बिल्कुल
0: फिजिकल एक्टिविटी जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, एंड प्लस मोबाइल।
1: जी
0: ठीक है, मोबाइल जो है वो बहुत बड़ी ही
1: जी
0: एक समस्या है,
1: ये बहुत
0: जो
1: बड़ा
0: हाँ
1: पॉइंट
0: जो
1: है।
0: बच्चों को नहीं, महिलाओं को नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही ग्रसित किए हुए हैं। ठीक है, और मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट आ रहा है, उस पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है प्रेगनेंसी में। हम प्रेगनेंसी में महिलाओं को बोलते हैं कि आप खुश रहें,
1: बिल्कुल
0: आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, अच्छी म्यूजिक सुने। ठीक है, मोबाइल में तो कंटेंट्स का तो कोई लिमिटेशन
1: कोई
0: नहीं है।
1: लिमिटेड
0: ठीक है, उसमें थोड़े थोड़े टाइम पे वो चेंज भी हो रहे हैं, तो इससे माइंड भी बहुत डाइवर्ट होता है, एंड प्लस आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। महिला जो भी करती है, जो भी खाती है, पीती है, जो देखती है, जो महसूस करती है, वो सारी चीजों का प्रभाव उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे पर पड़ता है। और बहुत ज्यादा ट्रैवल करना भी क्या सेफ नहीं होता है?
0: फर्स्ट 3 मंथ्स हम अब एज एन ऑब्स्टिट्रिशियन लोग मना करते हैं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है बच्चे के डेवलपमेंट का, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर सकती हैं ट्रैवल, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ट्रैवल किया जा सकता है, बट है कि कुछ दूरी चलने, 2 घंटे, हर 2 घंटे पे 15 मिनट का वॉक करने के लिए बोला
1: अच्छा
0: जाता
1: अच्छा
0: है। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जैसे कि ड्राइव तो सबको ही कर रहे हैं, हम लोग ट्रेन प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा बेटर है। फ्लाइट्स लेने के लिए मना करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उस समय कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कहीं पे
1: बिल्कुल
0: भी कुछ इमरजेंसी आ सकती है।
1: जी
0: हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सेफ है, बट फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर को अवॉइड करना चाहिए ज्यादा ट्रैवल करना।
1: बिल्कुल डॉक्टर स्मृति, आपसे हम अब ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी गर्भवती महिला को बीपी है तो उसे क्या सावधानी रखनी चाहिए, या शुगर है, या फिर अगर उनकी एनीमिया की दिक्कत है तो कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या क्या करना चाहिए उन्हें?
0: अनीमिया जो है, अनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी होना।
1: जी
0: ठीक है ना, ये अनीमिया सबसे कॉमन समस्या है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में गर्भावस्था के समय।
1: जी
0: 40% जो मटर्नल डेथ्स होते हैं वो अनीमिया के कारण होते हैं।
1: अच्छा
0: इंडिया का बात किया जाए तो, डेवलपिंग कंट्रीज का बात किया जाए, अनीमिया को ठीक करने के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, उनको रेगुलरली लेना चाहिए। ठीक है, और अपने हीमोग्लोबिन लेवल को हमेशा चेक करते रहना चाहिए।
1: अच्छा
0: ठीक, और गर्भावस्था में बीपी भी कई कारणों से बढ़ सकता है, तो बीपी जब बढ़ता है तो पेशेंट को तो कैसे पता चलेगा कि बीपी बढ़ रहा है? तो पेशेंट का या तो शरीर फूलने का लक्षण दिखेगा,
1: अच्छा
0: या चक्कर आएगा, या फिर सिर में दर्द, आंख के सामने अंधेरा छाना, बच्चे का मूवमेंट कम होना, बीपी जो है बच्चे पे भी बहुत अफेक्ट करता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए तुरंत ऑब्स्टेट्रिशियन का सलाह लेना चाहिए।
1: जी
0: मोस्ट कॉमन पेशेंट्स लेकर आते हैं पैर फूलना,
1: अच्छा
0: वो जो रिंग्स पहनते हैं वो टाइट हो जाते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ हाँ
0: ठीक है,
1: सही
0: तो बहुत मिथ्स है कि नहीं ऐसा होता है, गांव में सब बोलते नहीं ऐसा
1: हाँ
0: होता है, कोई
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: जाने की जरूरत नहीं है, बट नहीं, ऐसे में तुरंत अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। गर्भावस्था में शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं, इनफैक्ट थायराइड के भी बढ़ने के चांसेस होते
1: अच्छा
0: हैं। तो जब फर्स्ट पेशेंट हमारे पास आती है तो थायराइड का टेस्ट होता है, शुगर का टेस्ट होता है, सबका टेस्ट किया जाता है।
1: जी
0: इनफैक्ट अगर पेशेंट जो है पहले से थायराइड की गोली ले

0: रही है, तो हम लोग 25% डोज वैसे ही इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उसका थायराइड बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
1: अच्छा
0: और शुगर जो है 24 से 28 सप्ताह के बीच में, अगर किसी गर्भधारण की हुई महिला को शुगर नहीं भी है तो 24 से 28 सप्ताह के बीच में इसके बढ़ने के चांस रहते हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए 24 से 28 सप्ताह के बीच में जरूर स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि उसके उसके शुगर के लेवल क्या है। उसके लिए एक 75 ग्राम OGTT टेस्ट होता है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है और उसको करवाना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग आगे काम करते हैं।
1: बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर की सलाह हमेशा लेती रहनी चाहिए। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि कितने कितने दिनों पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए?
0: जैसे ही पता चले कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो तुरंत एक विजिट लेना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर उस समय देखकर एक अल्ट्रासाउंड करवा कर कि एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, या फिर कहीं कुछ और दिक्कत तो नहीं है। एक और चीज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
1: अच्छा,
0: जो एक्टोपिक का मतलब होता है अपने जगह से कहीं अलग प्रेगनेंसी, तो ये जानना बहुत जरूरी है शुरू में कि बच्चेदानी के अंदर बच्चा है भी या नहीं है, कहीं वो ट्यूब में तो नहीं आ गया, कहीं वो अंडाशय के अंदर तो नहीं है। ठीक है, तो वो अगर ऐसा होता है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है।
1: अच्छा,
0: वो एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब के अंदर ही होता है, फेलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर होता है, तो और 3 दिन बाद वो लुढ़क कर नीचे बच्चेदानी में आकर के चिपकता है।
1: बिल्कुल,
0: और वहीं पे ग्रो करता है। तो ट्यूब में अगर बच्चा कभी कभी वहीं रह जाता है और वहीं ग्रो करने लगता
1: अच्छा।
0: है, ट्यूब जो है एक बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है, और वो जब बच्चा वहां बढ़ता है तो ट्यूब फटने के चांस रहते हैं।
1: अच्छा,
0: और फटने का मतलब है कि वहां से ब्लीडिंग और पेशेंट की मृत्यु का कारण भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: इसमें तुरंत इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है।
1: अच्छा,
0: ठीक है, तो पहला अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। पहले होता था कि नहीं 3 महीने के बाद ही अल्ट्रासाउंड कराना, ये भी एक मिथ है।
1: बिल्कुल,
0: ये भी एक मिथ है कि नहीं पहला 3 महीना कोई अल्ट्रासाउंड का जरूरत नहीं है, पर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है और 3 महीने बाद ही कराएंगे। अगर ये ट्यूब में बच्चा रहेगा तब तो आप 3 महीना नहीं जा पाएंगे।
1: हाँ, नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल सही कहा।
0: ठीक है ना, तो एक अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। फिर है कि फिर जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड टेस्ट बोला जाता है, फिर हम लोग हर महीने बुलाते हैं पेशेंट्स को और नियमित जांच करते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में हर 15 डेज पे बुलाते हैं। ठीक, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जैसे बीपी है, शुगर है, तो फिर हम लोग सप्ताह सप्ताह में भी बुला करके पेशेंट को देखते हैं और उसकी जांच करते हैं।
1: डॉक्टर स्मृति, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी हमारी श्रोताओं को। चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: गर्भावस्था में स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए सही आहार, नियमित डॉक्टर की सलाह और पूरे आराम की जरूरत है। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए और भारी कामों से बचना चाहिए। किसी भी तकलीफ की स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर स्मृति। तो श्रोताओं, डॉक्टर स्मृति राज से बात करने के बाद बहुत सी चीजें, बहुत सी जानकारियां मिली। हमारी बातचीत के बाद एक बात तो तय हो गई कि चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, अगर सही जानकारी और डॉक्टरी सलाह मिल जाए तो हमारी जीत पक्की है। डॉक्टर स्मृति ने जो बातें बताई उन पर अमल करें और जागरूक रहें। डॉक्टर स्मृति, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्त समय से कुछ पल हमारे लिए निकाले। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत।
2: बहनें अभी सुन रही थीं खास बातचीत, और आज का विषय था कि गर्भावस्था और उनसे जुड़ी समस्याएं। भेंट वार्ता कर थी डॉक्टर स्मृति राज और उनसे बातचीत की थी सुभाष ने।
3: तो सखियों, कार्यक्रम की समय सीमा अब समाप्त होने को चली है। आज कार्यक्रम बस यहीं तक। कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी।
2: और अब अपने दोनों सखियों को यानी मैं शिल्पी
3: और मधु को दीजिए आज्ञा।
2: नमस्कार, नमस्कार।
4: गृहलक्ष्मी।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का, लेकिन उससे पहले एक संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म तीसरी मंजिल का

एक प्यारा सा नगमा, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले ने। संगीत राहुल देव बर्मन का है और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कटी पतंग से। आवाज किशोर कुमार की है, संगीत आर डी बर्मन का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

और अब आप सुनिए आशा भोसले की आवाज में ये नगमा। फिल्म का नाम है इजाजत। इसे लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

अभी आप ये गाना सुन रहे थे जिसके गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी। फिल्म का नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त और कार्यक्रम की होस्ट राजश्री को इजाजत।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत देश भर के लोगों ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने जताया आभार, कहा हर आशीर्वाद जनसेवा के उनके संकल्प को बनाता है दृढ़। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर दिया जा रहा जोर। राज्य के विभिन्न जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों, वर्कशॉप और विभिन्न प्रतिष्ठानों में धूमधाम से की गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा। दक्षिण अफ्रीका में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने जलवायु अनुकूलन को विकास, जन सुरक्षा और आजीविका की रक्षा का बताया विषय। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची में आयोजित T20 मैच में झारखंड के ईशान किशन और बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी खेल प्रेमियों को करेंगे रोमांचित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत समस्त देशवासियों ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति, जन कल्याण और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के प्रति आपका समर्पण एवं प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। इधर आज से एक महीने तक राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति प्रधानमंत्री जनसेवा रहे हैं। यह सफर जनसेवा से देश हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सेवा और सुशासन दृष्टिकोण से प्रभावित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए लगातार काम कर रही है। सेवा इस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद के खात्मे के साथ

ही एक उदाहरण है झारखंड का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना हो रहे थे।

0: नहीं।
1: साथ नक्सली यहां से खात्मा कर दिया। यहां के लोगों ने बताया कि उन्हें अब
2: पहले गुरबादी रहो, पेंशन मिल रहो, अब पेंशन मिल लो हमन के असाधारण जी लागत है। रोड भी बन गेलाय और हम लोग दे दिया, जमीन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बाल बच्चा पढ़ रहे हैं।

0: की पूजा अर्चना की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इसी दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। गुड्डा जिले के लाभुकों ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जुड़कर उन्हें न सिर्फ रोजगार मिला है बल्कि उनके बच्चों का भविष्य भी संवर रहा है।
1: हमारे देश प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो भी उन्होंने दलित समाज या पिछड़ा समाज या विश्वकर्मा समाज के लिए उन्होंने जो उत्थान किया है, सबसे पहले वो गरीबों की मसीहा है और गरीबों के लिए उन्होंने सब दिन सहारा दिया है। इससे बहुतों को रोजगार मिला और अच्छा फायदा हुआ, 80% लगभग कामगारों को फायदा हुआ है। अभी बहुत जमीन और आसमान का अंतर है।
2: पीएम विश्वकर्मा योजना के थ्रू मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। हम जैसे युवा को बहुत सहायक साबित हो रही है और मैं चाहता हूँ सरकार और भी बेनिफिट दे मुझे, और मुझे तो अभी तक बहुत अच्छा सुविधा मिली है।
0: स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत विकसित भारत। इस वर्ष यह अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा सफाई मित्र, सुरक्षा तथा सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जनभागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कल पार्लियामेंट्री लीडरशिप इन क्लाइमेट एडेप्शन एंड रेजिलेंस विषय पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूलन को केवल पर्यावरण नीति का विषय नहीं बल्कि विकास, जनसुरक्षा और आजीविका की रक्षा का माध्यम मानना चाहिए। भारत ने क्लाइमेट जस्टिस को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन और जलवायु सहनशीलता के लिए घरेलू स्तर पर निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत के संकल्प से प्रेरित होकर रांची में फैटी लीवर मुक्त रांची अभियान की शुरुआत की गई है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने लोगों से खान पान और जीवन शैली को लेकर जागरूक रहने की अपील की है।
3: फैटी लीवर मुक्त रांची एक बड़ा अभियान डॉक्टर एस के सरीन के नेतृत्व में चलेगा। आज की जीवन शैली, अनियमित खान पान, डब्बा बंद खान पान, उसका परिणाम है कि लीवर आजकल फैटी होता है। ये एक बड़ा अभियान है और एक बस से लगभग 1,20,000 लोगों की एक साल में टेस्टिंग होगी। देश का ये पहला शहर होगा फैटी लीवर फ्री रांची। निश्चित रूप से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,05,000 20

अभी आप सुन रहे थे शोभा गुट्टू के स्वर में, मिश्र पहाड़ी में ठुमरी और दादरा। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज में गजल।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं, बस अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़।

0: कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में

0: निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
3: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति, खुशहाली, समृद्धि हर एतबार से हम देखें, ख्वाह वो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो। कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
2: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
4: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमरीकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
5: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
6: Draining the swamp that provided an...
7: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर न थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में भाजपा का 1 माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया में 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमारा कार्यक्रम सुन पा रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित कार्यक्रम जय भारती का। एक देशभक्ति गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक संदेश के बाद।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल स्थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

ये गाना अभी आप सुन रहे थे फिल्म फना से। इसे गाया महालक्ष्मी अय्यर ने, संगीतकार जतिन ललित और गीतकार प्रसून जोशी। अगला गाना फिल्म दोस्ताना से।

ये गाना अभी आप सुन रहे थे फिल्म दोस्ताना से, हमने इसे लिया था। आवाजें थी श्रेया घोषाल, अमानत अली, विशाल ददलानी और राजा हसन की। संगीत दिया था विशाल शेखर ने और इसे कलमबद्ध किया था अन्विता दत्त ने। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लव स्टोरी से। आवाजें अमित कुमार और लता मंगेशकर की हैं, संगीतकार आडी बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी।

और अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी से, आवाज कुमार शानू की है और इसे लिखा है जावेद अख्तर ने। लीजिए सुनिए।

मैं जानती हूँ वो अभिनय नहीं था, वो तुम्हारा प्यार था मेरे लिए। कितनी आसानी से कह डाली तुमने अपने मन की बात, और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती।

0: इसी गाने के साथ जय भारती कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:55 हो चले हैं और इस वक्त आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन है। इस अवसर पर कोडरमा में भव्य तैयारियां की गई हैं। यहां 11 कलाकारों ने 48 घंटे में 1,40,000 दीयों से पीएम मोदी का भव्य मोजेक आर्ट बनाया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मौजूदगी में शाम को ड्रोन के जरिए इस कलाकृति का एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ध्वजाधारी आश्रम में स्वच्छता अभियान चलाकर प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की।
1: पहली बार इस तरह मोजेक आर्ट के माध्यम से लगभग 1,00,000 से भी ज्यादा दिए का उसमें एक चित्र बनाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उस चित्र के माध्यम से हम सब लोग उनके जन्मदिन की शुभकामना भी देते हैं। और उसमें हमारे जो भी या तो लाभार्थी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, हर कोई आएंगे, शुभकामना संदेश के साथ साथ एक दीपक भी जलाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर आज से देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू किया गया है। इस उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालयों में भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। श्री साहू ने पीएम मोदी के 25 वर्षों के जन सेवा काल की सराहना की।
2: से देश के घर के दरवाजे पर आप अपनी गुलाम होते हैं, लोगों को सेवा करने का काम किया है, और देशवासी भी आप एक अपने घर के दरवाजे पर दिया जलाकर आशीर्वाद देने का काम करने वाले हैं। और इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश की ओर से आज प्रदेश कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है।
0: राज्य के दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंचे हैं। आज दिवंगत मंत्री का 12वां है। उत्सव उपवन में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, हफीजुल हसन, दीपक बिरवा, दीपिका पांडे सिंह, नेहा तिर्की और इरफान अंसारी समेत कई वरिष्ठ नेता श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। असीम मंडल पर झारखंड और ओडिशा सरकार द्वारा कुल 2,20,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड के आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह असीम के पश्चिम बंगाल में सरेंडर करने की उन्होंने पुष्टि की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और विवेकानंद विद्या मंदिर में संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। सेवा सप्ताह के तहत विकसित भारत @2047 विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई थी। क्षेत्रीय निदेशक डॉ. कुमार संजय झा और प्रधानाचार्य अमिताभ लाहन ने बताया कि इसमें 12 स्कूलों और 4 विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया।
3: हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अपनी भावनाओं को किस तरह प्रदर्शित करती हैं, देश का जो 2047 का जो हमारा एक ब्लूप्रिंट है, एक लक्ष्य है विकसित भारत का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रभावी संदेश है कि पूरे देश को किस तरह हम इसको विकसित भारत के रूप में अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़े।
0: जमशेदपुर के बर्मा माइन स्थित केरला पब्लिक स्कूल में आज डाक विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्कूल के 104 शिक्षक शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। डाक विभाग के अधिकारियों ने शिक्षकों को बचत योजनाओं, डाक जीवन बीमा और कम प्रीमियम पर मिलने वाले फायदों की जानकारी दी और इसे बच्चों के परिवारों तक पहुंचाने की अपील की।

0: हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं।
1: डाक विभाग धीरे धीरे लोगों के जहन से उतरता जा रहा है, जिसको बचाने के लिए सिंहभूम डिवीजन द्वारा एक अवेयरनेस सेशन किया गया, जिसमें सबसे पहले हम लोग विद्यालय में आए हैं, क्योंकि अगर शिक्षकों को शिक्षित किया जाए डाक विभाग के बारे में तो ऑटोमेटिक वो बच्चों में चला जाए। तो ये सेशन मूलतः जो हमारा सीनियर स्कीम चलता है और हमारा जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो हम लोग करते हैं उसके बारे में मेन फोकस था। और भी डाक विभाग बहुत सारा चीज कर रहा है, इससे आप हर घर डाक घर के तहत हम लोगों से जुड़े और डाक विभाग को फिर से उस गति में लेके चले।
2: रेलवे बोर्ड ने चोपन और मधुपुर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रेन के परिचालन से चोपन, पलामू, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र के यात्रियों को मधुपुर आने जाने में सुविधा होगी। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने सृजन के प्रति सम्मान का संकल्प लेने का भी आह्वान किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी, पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर, तहसील खोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहाँ के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में। ऐसे जंगल जहाँ पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियाँ हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक छकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। आशुतोष होता हूँ। एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा। वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ। जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: হেমোর চিত্ত পুণ্য তীর্থ জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से

0: प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
1: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक, कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है। रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले, तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुम लता

0: और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आऊंगी रांची

जहां खुशियों की महफिल सजी है, दिलों में उमंग जगी है और सुरों की इस खूबसूरत दुनिया में सभी श्रोताओं का स्वागत करती है आपकी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री। लेकर आई हूं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कहते हैं ना, प्यार वो एहसास है जिसमें इंसान खुद को भूलकर किसी और में अपना पूरा जहां तलाश लेता है। कभी किसी की मुस्कुराहट दिल चुरा लेती है तो कभी किसी की आवाज ही दिल की धड़कन बन जाती है। तो आइए आज की इस सुरीली शाम में हम भी डूब जाएं प्यार की उसी खूबसूरत एहसास में, जहां मोहब्बत इतनी गहरी हो कि सारा आलम पीछे छूट जाए और बस एक चेहरा, एक नाम और एक एहसास दिल में रह जाए।

कभी कभी जिंदगी हमें वो इंसान दे देती है जिसके मिलने के बाद लगता है अब सफर में कोई कमी नहीं। एक ऐसा हमदम जिसके साथ हर मुश्किल आसान लगे, जिसकी मौजूदगी ही दिल को सहारा दे और जिसकी मुस्कुराहट में पूरी दुनिया की खुशी मिल जाए। कहते हैं मोहब्बत सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी के मिल जाने के बाद जिंदगी को और खूबसूरत महसूस करने का नाम है। तो आइए ना इसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं एक ऐसे नगमे के साथ जिसमें है किसी अपने के मिल जाने की खुशी, साथ का सुकून और दिल की एक प्यारी सी दुआ।

आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज अपनी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री के साथ। और देखिए ना, ये रांची मेलोडीज की महफिल मोहब्बत के रंग और गहरे होते जा रहे हैं। कभी कोई बात पूरी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आंखें कुछ कह देती है, मुस्कुराहट कुछ सुना देती है और दिल तो वो सुन लेता है जो लफ्जों में कभी कहा ही नहीं जाता। कभी कभी दो अजनबी मिलते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ खामोशियां होती हैं और फिर अचानक एहसास होता है, अरे बात तो कुछ बन गई। तो आइए ना, इसी मीठी सी शरारत, इसी अनकही मोहब्बत और दिल की हल्की सी धड़कन को सुरों में महसूस करते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्राची मेलेडीज। इस खूबसूरत महफिल में जब जिक्र मोहब्बत का होता है तो सिर्फ लफ्जों में नहीं दिल की धड़कनों में बसी होती है। मोहब्बत जब सच्ची हो तो उसमें वादे भी होते हैं, इंतजार भी होता है और अपने महबूब के लिए एक ऐसा समर्पण होता है जिसके सामने दुनिया की हर चीज छोटी लगने लगती है। कभी दिल अपने सबसे अजीज शख्स से बस इतना कहता है कि मेरी मोहब्बत पर यकीन रखना, मेरे एहसास को समझना, क्योंकि इस दिल ने तुम्हें पूरी शिद्दत से चाहा है। तो आइए इसी गहरे एहसास, इसी शिद्दत को महसूस करते हैं।

तो श्रोताओं, इस रांची मेलेडीज के साथ मोहब्बत के कई रंग हमने साथ साथ महसूस किए, कभी इकरार, कभी इंतजार, कभी दिल की अनकही बातें। तो चलिए अब बात करते हैं भरोसा की, जो आपका हम पर है। और हम करते हैं आपसे वादा कि आप और हम हमेशा साथ रहेंगे, दो दिलों को उम्र भर के लिए एक दूसरे से जोड़ कर रहेंगे। क्योंकि भाई, आप सभी जानते हैं कि जब किसी अपने से दिल कहता है कि रिश्ते में चाहे कितने भी मौसम आए, खुशियां हो या मुश्किलें हो, बस हाथ थामे रखना और साथ निभाने का वादा करना है ना।

0: बिल्कुल, फिर मिलेंगे इस बात का वादा करते हुए। रांची मेलेडीज कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाजत अपनी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री को। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बज रहे हैं और इस वक्त आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह पहुंचे और दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते थे और उनका निधन राज्य के लिए बड़ी क्षति है। राज्य में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी कार्यक्रमों में इसके केवल शुरुआती 2 छंद गाने की अनुमति मांगी है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना गुमला जिले के बांस कारीगरों के लिए वरदान साबित हो रही है। गणेशपुर डिपा गांव के कारीगरों को टूल किट मिलने के बाद उनके जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। स्थानीय दंपति ने बताया कि इस योजना से बेरोजगारी दूर हुई है और उनके उत्पाद अब स्थानीय बाजारों से लेकर राजधानी रांची के प्रदर्शनी मेलों तक पहुंच रहे हैं। देश की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आगामी 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत साहिबगंज जिले में 19 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 13 चिकित्सकों के माध्यम से ग्रामीणों को सुलभ और हानि रहित इलाज मिल रहा है। चतरा के लापता ऑटो चालक तिलक यादव का 5वें दिन भी सुराग नहीं मिला है। उनका लावारिस ऑटो बरामद होने के बाद परिजनों और ऑटो चालक संघ ने आज हजारीबाग चतरा मुख्य मार्ग जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। एसडीपीओ सनी वर्धन ने बताया कि विशेष टीम

0: तलाशी अभियान चला रही है और जामताड़ा जिले के छोटे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन कॉलोनी और बिजली कार्यालयों में आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना भक्ति भाव से की जा रही है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम लीजिए सुनिए, विज्ञान जगत।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह इस बार फिर से हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं आपको इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि सड़क नियमों की हमें अनदेखी क्यों नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच कैसे है इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक नरेंद्र कपानी के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे साबुन के आविष्कार के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि सड़क नियमों की अनदेखी हमें क्यों नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। और ये एक ऐसा विषय है जिसका संबंध सीधे हमारे परिवार की सुरक्षा से है। सड़क नियमों की अनदेखी करना हमारे लिए कई बार घातक सिद्ध होता है। सड़क हमारे रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम पैदल, साइकिल से या फिर बाइक से या कार से सफर करें, सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी। अक्सर हम छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लाल बत्ती होने पर भी आगे बढ़ जाते हैं, बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं, कार में बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हैं। और कई बार इन्हीं सभी चीजों को नजरअंदाज करने के कारण हम कई बार दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं। याद रखिए, सड़क पर कुछ सेकंड की जल्दबाजी हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। सबसे पहली बात कि अगर हम दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। हेलमेट केवल पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहननी चाहिए। अगर कार में बैठे हैं, कार चला रहे हैं, तो कार में बैठते ही चालक और यात्रियों को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। अचानक टक्कर की स्थिति में सीट बेल्ट गंभीर चोट के लगने से हमें होने वाले खतरे को कम करता है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल का हमें पालन करना चाहिए। या सिग्नल तोड़कर हम केवल नियम नहीं तोड़ते बल्कि अपनी और दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। सड़क पर एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। हमेशा सड़क, मौसम और यातायात की स्थिति के अनुसार सुरक्षित गति पर ही वाहन चलाना चाहिए। फोन पर बात करना, मैसेज पढ़ना या सोशल मीडिया देखना वाहन चलाते समय बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाने से निर्णय लेने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में वाहन चलाना खुद के साथ साथ सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के लिए भी काफी खतरा पैदा कर सकता है। पैदल चलने वालों की भी सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़क पार करते समय हमेशा निर्धारित जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवरब्रिज या पैदल पार पथ का इस्तेमाल करना चाहिए। सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। खास करके बच्चों को भी छोटी उम्र से ही सड़क सुरक्षा के नियम जरूर सिखाने चाहिए। एक छोटी सी बात हमेशा हमें सफर के दौरान याद रखनी चाहिए कि हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए है, सीट बेल्ट सुरक्षा के लिए है और ट्रैफिक सिग्नल के जो नियम है वो हमारी सुरक्षित यात्रा में सहायता करने के लिए है। सड़क पर हम अकेले नहीं होते बल्कि हमारे साथ पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग, साइकिल सवार और दूसरे वाहन चालक भी होते हैं। इसलिए जिम्मेदार चालक वही है जो केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के बारे में भी सोचता है। तो हमने आज बात कर ली चर्चा में कि सड़क नियमों की हमें अनदेखी क्यों नहीं करनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं भेंटवार्ता में आज ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच कैसे है इसके बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में है प्रोफेसर वी एस राठौर, जो कि सुदूर संवेदन एवं भू सूचना विभाग में कार्यरत हैं BIT मिश्रा में। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं।
1: नमस्ते।
0: आज जो हमारा विषय है वो काफी गंभीर है और काफी चिंता करने वाली भी बात है इसमें, क्योंकि हम जिस धरती पर रहते हैं अगर वो सुरक्षित ना रहे तो शायद हमारा जो अस्तित्व है वो भी खतरे में आ सकता है। तो हम आज बात कर रहे हैं ओजोन परत के बारे में, जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी भी कहा जाता है। और अगर सुरक्षा कवच में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाए, जो संरचना है, जो इसकी उत्पत्ति हुई है, उसको क्षति होने लगे, तो हमारा अस्तित्व भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति में आ जाएगा। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ओजोन परत है क्या और पृथ्वी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये?
1: सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो ओजोन परत की बात चल रही है, ये क्यों हमारे लिए इतना जरूरी है और कि ये क्या है। तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है जो कि 80 किलोमीटर तक है। 80 किलोमीटर के बाद में एक्सोस्फीयर आ जाता है, और ये 80 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल है, इसमें अलग अलग परतें होती है। इसमें एक स्ट्रेटोस्फीयर है जिसके अंदर ये ओजोन की एक परत है, ओजोन लेयर है
0: जी,
1: जो कि हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उनसे हमें बचाती है। पृथ्वी में जीवन संभव है, तो ये ओजोन परत इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि इसकी वजह से पृथ्वी में जीवन संभव है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसकी ऊंचाई जो है 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक हो सकती है। ये भूमध्य रेखा के आसपास इसकी ऊंचाई कम होती है, और पोलर रीजन पे जाते हैं तो वहां पे ज्यादा होती है और थिकनेस भी ज्यादा होती है। और अभी क्या हुआ कि ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो गई, इसके विषय में हम क्यों इतना गंभीर हो गए, हुआ क्या कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, हमारी गतिविधियां जो इंडस्ट्रियल गतिविधियां, उसकी वजह से ओजोन के अंदर छेद होने लगे, ओजोन की थिकनेस कम होने लग गई। ये हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया,
0: और इसीलिए हम इस विषय पर बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई है, उसके बारे में आपने बातचीत की, तो हम आपसे सरल भाषा में अगर समझना चाहे तो धरती से इसकी जो ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर के ऊंचाई पर जाकर ये मिलती है?
1: ये हमारे कहीं कहीं इसकी ऊंचाई वेरी करती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है।
0: तो सूर्य की रोशनी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी भी है
1: जी,
0: हम उससे काफी ऊर्जा लेते हैं।
1: हाँ।
0: और दिन की शुरुआत उसी से होती है हमारी
1: जी।
0: तो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं, जो यूवी रेज हैं, ये है क्या और इससे हमें क्यों बचना जरूरी है?
1: ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी रेज होती है। जैसे हम लोग ये भी जानते हैं, आम आदमी ये भी एक्सरे को जानता है
0: जी,
1: एक्सरे हमारे शरीर के लिए थोड़ी सी मात्रा से ज्यादा होने से नुकसानदायक होता है, वैसे ही अल्ट्रा वायलेट किरणें भी हाई फ्रिक्वेंसी किरणें होती है, और ये भी हमारे शरीर के लिए, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। जैसा कि अगर ये हमारी ओजोन लेयर नहीं हो, या ये पतली हो जाए, या इसमें छेद हो जाए, तो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी धरती पर आने लग जाएगी, और अधिक मात्रा में अल्ट्रा वायलेट रेज आने से कैंसर हो सकता है शरीर में, तो स्किन की बीमारी हो गई, आंखों की बीमारी हो सकती है, और पौधों की जो फोटोसिंथेसिस है या उनकी ग्रोथ है वो रुक सकती है, कम हो जाएगी, और जैसे समुद्री जीव है वो भी मर सकते हैं, उनके अंडे मर सकते हैं मछलियों के, और ये हमारी पारिस्थितिकी तंत्र जो भी है पृथ्वी का, उसको पूरी तौर पर डिस्टर्ब कर सकता है, काफी हानिकारक होता है। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: यानी कि हम अगर बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर में जो लेयर बना हुआ है
1: जी,
0: तो यूवी रेज को रोकने के लिए ओजोन परत स्पेशली बहुत कारगर साबित हो रहा है। और अगर दूसरे ग्रहों की बात करें जहां पर जीवन संभव नहीं हो पाया
1: जी,
0: कहीं ना कहीं वहां पर ओजोन परत नहीं
1: होने
0: के कारण ऐसा हुआ?
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे चंद्रमा हमारे बहुत पास में है, उसके ऊपर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो सूर्य की जितना भी हानिकारक किरणें हैं वो सारी के सारी उस पर पहुंचती है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। और वहां पर वायुमंडल नहीं होने से बाकी गतिविधियां भी नहीं होती है, जैसे हमारे तो वायुमंडल है, हम धरती के ऊपर इतने सारे जीव और पौधे हैं, उतने खाने पीने की चीजें हैं, कृषि योग्य चीजें हैं, तो वहां पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती, और यहाँ पे तो वायुमंडल है, तो हमारे को ये सारी
0: चीजों की जो सुविधा है
1: बिल्कुल सुविधा है।
0: लेकिन एक बात आती है सर, कि जब हम इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं
1: जी,
0: और इस ओजोन लेयर की वजह से हमारी धरती सुरक्षित है
1: जी,
0: सभी को पता होगा कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के वजह से हमारा जो वायुमंडल है वो सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। तो आए दिन अभी जिस तरीके से विकास के नाम पर अलग अलग फैक्ट्रियां जो है वो लग रही हैं, और इनसे निकलने वाले जो धुएं हैं वो वातावरण में घुल रहे हैं, बीमारियां भी काफी देखने को मिल रही हैं, तो क्या इन सभी चीजों का असर भी ओजोन लेयर पर पड़ता है, या फिर ओजोन लेयर के पतला होने के पीछे कोई और कारण है?
1: मुख्य तौर पे हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, औद्योगिक गतिविधियां हैं, जिसमें आज हमें सुविधाजनक जीवन चाहिए, उसका बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे हमारे स्टील फैक्ट्री हुई, बहुत सारे जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर हुए, एयर कंडीशन हुए, और कृषि में हम लोग जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं वो हुए, इन सब में ओजोन डिप्लीशन के तत्व होते हैं।
0: अच्छा,
1: जैसे हाइड्रोक्लोरोकार्बन होता है, CFC होता है, ये सारी चीजें हेलोन्स होते हैं, ये सारी चीजें बनाने से वो वातावरण में निकलते हैं और वो वातावरण में निकल के ओजोन से रिएक्शन होके ओजोन को पतला करते हैं और ओजोन के अंदर छेद करते हैं। जैसे कि सब लोग जानते होंगे कि हमारे जो ध्रुव है, अंटार्कटिका और आर्कटिक ध्रुव है, वहां पर ओजोन के अंदर बहुत बड़ा छेद हो गया था, एक देश जितना बड़ा छेद हो गया, जैसे भारतवर्ष जितना बड़ा छेद हो गया था, सरल भाषा में समझने के लिए। उस छेद की वजह से हमारे पृथ्वी के ऊपर इतना अल्ट्रावायलेट किरणें आने लग गई कि ये हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको नुकसान होने लग गया बहुत। अभी सारे देशों ने ये जब जाना कि हाँ हम लोग ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मनुष्य के अंदर इतना कैंसर हो रहा है इसकी वजह से, तो सब लोगों ने बहुत सारे कन्वेंशन किए और उसके बाद सभी देशों ने ये माना कि नहीं, हमको इनमें कटौती करनी है। तो उसके बाद में धीरे धीरे अब सभी देशों ने ये कटौती करना शुरू कर दिया। 1980 से पहले इसकी हेल्थ अच्छी थी ओजोन की, तो अब 90 ऑनवर्ड्स जो इतने भी सारे देशों के सम्मेलन होने लगे हैं और उन लोगों ने ये कटौती करना शुरू किया है, CFC और जितने भी ओजोन डिप्लीशन के जो कारण है उन सबको, तो उनमें कटौती करना शुरू किया, उनके अल्टरनेट देखना शुरू कर दिया और उसके बाद से अब धीरे धीरे हेल्थ इंप्रूव होने लगी। अभी भी ये 1980 से पूर्व स्थिति में नहीं पहुंची है, लेकिन काफी कुछ धीरे धीरे हम सुधार होने लग गया, इसकी हेल्थ इंप्रूव होने लग गई है। तो अभी की स्थिति से हम अगर कंट्रोल करते जाएं और आगे का जो प्लान है उसके से कंट्रोल किया जाए तो काफी हद तक 2040-2045 तक हम काफी इसको रिपेयर कर पाएंगे।
0: यानी कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो काफी क्षति हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: अब अगर आम भाषा में कहें कि आम आदमी इसमें अपना योगदान कैसे दे सकता है कि ओजोन परत जो है वो सुरक्षित रहे, तो ऐसे क्या चीजें हैं जो आम आदमी करके पृथ्वी को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकता है?
1: तो आम आदमी के लिए यही है कि हम जितना जीवन सरल जिएंगे, कम से कम ऐसी चीजों को इस्तेमाल करेंगे जिनका आज उनको उपयोग तो आदमी को अपने जीवन को अच्छा करने के लिए करता है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट भी हैं। जितने भी हम आज एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज हो रहा था
0: जी,
1: अब उसका अल्टरनेट तो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक देश की और औद्योगिक हमारी जो इकाइयां उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ आम आदमी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीवन को ज्यादा उपभोक्तावादी नहीं बनके कम से कम उसमें,
0: यानी कि एयर कंडीशनर, फ्रिज, इन सभी चीजों का इस्तेमाल अगर कम करे तो भी फायदा हो सकता है।
1: फायदा होगा।
0: एक बात और यहाँ पर समझ में होगा सर कि क्या पेड़ों की कटाई से भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच सकता है?
1: हाँ, वो भी है ही है किसी न किसी तरीके से, तो वो भी वनों का कटाई का भी कारण बनता ही है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो निकलती है। लेकिन अभी आप देखिए कि कृषि उत्पादन हम कर रहे हैं
0: जी,
1: कृषि उत्पादन में ऐसे पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं जो कि इसमें बढ़ावा देता है, जिसमें ओजोन की हेल्थ खराब होती है। ओजोन की हेल्थ खराब होगी तो हमारा जीवन संभव कैसे होगा?
0: बात करें कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितना जरूरी है, तो हम यही कह सकते हैं कि हमारा जीवन ही वही है और हम उस लेयर यानी कि ओजोन परत के वजह से हम सुरक्षित हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हम बीमारियों से भी बचे हुए हैं। अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो उसका सीधा असर मानव समाज पर तो पड़ेगा ही, जीव जंतु और पेड़ पौधों पर भी।
1: बिल्कुल, पेड़ पौधों पर भी असर पड़ रहा है इसका, जीव जंतुओं पर भी असर पड़ रहा है और मनुष्य भी असर पड़ रहा है, और आंखों की रोशनी कैटरेक्ट होने का डर रहता है।
0: तो आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो मतलब अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें या AC फ्रिज का इस्तेमाल कम करें?
1: बिल्कुल,
0: आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप जीवन को जितना सरल रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। प्रकृति के साथ जिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आदमी सुविधाएं नहीं ले, लेकिन सुविधाएं लेने के साथ साथ आदमी को इतना लालची भी नहीं होना है कि वो एकदम मैं एयर कंडीशन से बाहर ही नहीं निकल सकता, मैं

सुरक्षा कवच कैसे है इसके बारे में। और इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए, तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिकों के बारे में, और आज हम जिस महान वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह कपानी।

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की जिनके प्रयोगों ने दुनिया को संचार की एक नई राह दिखाने का काम किया। हम आपको बताते चलें कि नरेंद्र कपानी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1926 को पंजाब के मोगा में हुआ था। बचपन से ही इन्हें विज्ञान और तकनीक में काफी गहरी रुचि थी। इन्होंने भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उस शिक्षा के लिए विदेश का रुख किया। कपानी ने इंग्लैंड के इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के क्षेत्र में शोध किया। इनके शोध का सबसे महत्वपूर्ण विषय था प्रकाश को कांच के बेहद पतले रेशों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। अब जरा सोचिए कि अगर प्रकाश को एक पतली कांच की तार के भीतर आगे बढ़ाया जाए तो क्या वो लंबी दूरी तक संदेश पहुंचा सकता है? यही सवाल वैज्ञानिक नरेंद्र कपानी के शोध का आधार बना। इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फाइबर ऑप्टिक तकनीक में प्रकाश के माध्यम से सूचना भेजी जाती है। आज इसी तकनीक की बदौलत इंटरनेट, टेलीफोन, केबल टीवी और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर जैसी सेवाएं संभव हो पाई हैं। सन 1950 के दशक में कपानी ने अपने प्रयोगों के जरिए ये प्रदर्शित करने का काम किया कि प्रकाश को मुड़े हुए कांच के रेशों के भीतर नियंत्रित तरीके से आगे ले जाया जा सकता है। इनके इसी काम ने आधुनिक फाइबर ऑप्टिक संचार की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1956 में कपानी ने फाइबर ऑप्टिक्स शब्द को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी क्षेत्र में इनके शोध ने इन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया। नरेंद्र कपानी केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि एक सफल उद्यमी, शिक्षाविद भी थे। इन्होंने अमेरिका में काम किया और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संस्थानों और परियोजनाओं से जुड़े रहे। इनके योगदान को देखते हुए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में इनका निधन हो गया, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इनका योगदान आज भी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। आज जब हम मोबाइल पर वीडियो कॉल करते हैं, कुछ ही सेकंड में बड़ी फाइल डाउनलोड करते हैं या इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे फाइबर ऑप्टिक्स की तकनीक काम कर रही होती है। नरेंद्र कपानी की कहानी हमें ये संदेश देती है कि एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा और लगातार किए गए प्रयोग पूरी दुनिया के संचार का तरीका बदल सकते हैं। तो आज हमने आपको जानकारी दे दी कि नरेंद्र कपानी कौन थे और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं खोज और आविष्कार में आज साबुन के बारे में। सोचिए अगर साबुन नहीं होता तो क्या होता? हाथ धोने से लेकर कपड़े साफ करने और नहाने तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर साबुन बना कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इतिहासकारों को लगभग 2800 ईसा पूर्व के आसपास साबुन जैसे पदार्थ बनाने के प्रमाण मिलते हैं। उस समय लोग पशु वसा या वनस्पति तेल को राख के साथ मिलाकर एक ऐसा पदार्थ तैयार करते थे जो सफाई में मदद करता था। अब सवाल उठता है कि लोगों को ये तरकीब कैसे मिली? इसके पीछे एक प्रसिद्ध कहानी भी सुनने को मिलती है कि कहा जाता है कि प्राचीन रोम में सपो पर्वत नाम की एक जगह है जहां पर पशु की बलि दी जाती थी। बारिश के पानी के साथ पशु की चर्बी और लकड़ी की राख नीचे मिट्टी में मिलती चली गई। लोगों ने देखा कि ये मिश्रण कपड़ों और गंदगी को साफ करने में मदद करता है। इसी कहानी से साबुन के लिए अंग्रेजी शब्द सोप को जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इतिहासकार इस कहानी को प्रमाणित इतिहास नहीं मानते, इसे एक लोकप्रिय किंवदंती के रूप में माना जाता है। समय बीतता गया और साबुन बनाने की तकनीक विकसित होती गई। प्राचीन मिस्र, यूनान और रोम में भी सफाई के लिए साबुन जैसे पदार्थों का इस्तेमाल होने लगा। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि साबुन सिर्फ शरीर की गंदगी ही नहीं हटाता बल्कि तेल और चिकनाई को भी पानी के साथ हटाने में मदद करता है। और अगर आज की बात करें तो आज बाजार में हमें नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, हैंड वॉश और कई तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। साबुन की मूल रासायनिक प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण कहा जाता है, जिसमें वसा या तेल की छार के साथ प्रतिक्रिया से साबुन बनता है। तो अगली बार जब आप साबुन से हाथ धोएं तो याद रखिएगा, आपके हाथ में सिर्फ सफाई का साधन नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी मानव सभ्यता की एक खोज का आधुनिक रूप है। छोटी सी राख और तेल के मिश्रण से शुरू हुई सफाई की ये कहानी आज हमारे दैनिक जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुकी है।
तो हमने आपको ये बता दिया कि साबुन का आविष्कार कैसे हुआ और आज हम इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग रूप में। और आज हमने ढेर सारी बातें कर ली, ढेर सारी जानकारी आपके साथ साझा कर ली। और साबुन का इस्तेमाल करें लेकिन अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। चर्चा का विषय था सड़क नियमों की अनदेखी ना करें। प्रस्तुति प्रभु सरन की।

श्रोताओं, आज विश्वकर्मा दिवस पर आप सबों को बहुत बहुत बधाई। आइए आज हम आपको आज प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 4:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 प्रादेशिक मुख्य समाचार। युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युवानी आप सुनेंगे 5:02 पर।

5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोग। 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार। किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी, ये आप सुनेंगे 6:02 पर।

6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। 7 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल आदिवासी अखड़ा। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:15 पर।

7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर भारती। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पेशल प्रोग्राम दिल्ली केंद्र से चीयर फॉर भारत बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान।

8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9, 9:15 पर आप सुन पाएंगे उर्दू में समाचार।

9:30 पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड दिल्ली केंद्र से। 9:45 पर आप सुनेंगे इनसाइटस दिल्ली केंद्र से। फिल्मी गीत का कार्यक्रम सुनहरी यादें आप सुनेंगे 10 बजे।

10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म नटवरलाल से। गीत आनंद बख्शी के हैं, संगीत राजेश रोशन के, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिलवाले से। गीत समीर के हैं, नदीम श्रवण के संगीत है, आवाज उदित नारायण की।

आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म में बाजीगर से। गीत जफर गोरखपुरी के हैं, अनु मलिक के संगीत है, सुर आशा भोसले और विनोद राठौर के।

आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गुलाम से। गीत नितिन रायकर की है, संगीत जतिन ललित के, आवाज आमिर खान और अलका याग्निक के।

आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से। गीत समीर के हैं, जतिन ललित के संगीत है, आवाज कमल खान की।

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

0: जाना। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम खेरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर आज से देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ है। इस उपलक्ष्य में रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज जमशेदपुर सदर अस्पताल में दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम अंग और व्हीलचेयर बांटे गए। हेल्प क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो ने लाभुकों को सहायता सामग्री सौंपी और समाज सेवा के इस प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आज चतरा रेड क्रॉस सोसाइटी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। असीम मंडल पर झारखंड और ओडिशा सरकार द्वारा कुल 2,20,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड के आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने असीम के पश्चिम बंगाल में सरेंडर करने की पुष्टि की है। रांची के नामकुम में आयोजित भव्य विश्वकर्मा पूजा महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नामकुम में जल्द ही एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की। और रांची के रोवर जसविंदर सिंह का चयन, जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय रोइंग दल में हुआ है। वह पुरुष वर्ग की मेन्स फोर्स स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी चाईबासा है, प्रस्तुत है कार्यक्रम अभिवरण। पांच बजकर 5 मिनट पर आज का गुलदस्ता कार्यक्रम, 5:30 बजे फिल्म संगीत और 6 बजे मुख्य समाचार होंगे।

6:02 पर बंगला कार्यक्रम सातरंग, 6:30 संथाली कार्यक्रम होगा, 7 प्रादेशिक समाचार, उसके बाद ज़िले में आजकल 7:15 आपकी पसंद कार्यक्रम, 7:30 कार्यक्रम किसान वाणी। इस प्रायोजित कार्यक्रम के बाद आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम होगा 8:00। 8:30 सुनिएगा रजनीगंधा कार्यक्रम। 9:30 समाचार संध्या का प्रसारण होता है और 9:00 न्यूज़ 9।

बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम होंगे, 10 बजे स्कंद से सुनेंगे महफिल कार्यक्रम में गज़ल, 10:30 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम सुरों के रंग में, 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज, और आज की सभा संपन्न होगी 11:11 पर। तो ये था इस सभा का कार्यक्रम विवरण।

5:05 हो रहे हैं और पेशी खिदमत है आज का गुलदस्ता कार्यक्रम, जिसमें लेकर आए हैं चंद युगल गीत। यह है फिल्म बंदिश का नगमा।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। आप सुन रहे थे गुलदस्ता कार्यक्रम में चंद युगल गीत।

फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आ जाइए, सुनते हैं चंद मिले जुले गीत। आगाज शीर्षक गीत से, फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

0: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी। लो,

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा द्वारा रामगढ़ सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद और विधायक रोशनलाल चौधरी शामिल हुए। वक्ताओं ने पीएम मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की सराहना की। सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार ने रक्तदान को जन कल्याण का बड़ा माध्यम बताया। राज्य में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी कार्यक्रमों में इसके केवल शुरुआती दो छंद गाने की अनुमति मांगी है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया है। राज्य भर में आज निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से की जा रही है। इस अवसर पर रांची के नामकुम में आयोजित भव्य महोत्सव में मुख्य अतिथि और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने नामकुम में जल्द ही एक नया कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की बड़ी घोषणा की। मौसम केंद्र रांची ने आज राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों सहित उत्तर पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं बादल गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी है। अगले तीन दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। और भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रांची स्थित स्कूल जेवीएम श्यामली के लिए आज गर्व का दिन रहा। स्कूल के पूर्व छात्र और झारखंड के प्रतिभावान ऑलराउंडर शिखर मोहन का चयन प्रतिष्ठित ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में हुआ है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: আপনারা শুনছিলেন শ্রীকান্ত আচার্যের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত। এবার একটু বিজ্ঞাপন বিরতি।
1: मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। শ্রোতা বন্ধুরা, এবার আমরা চলে যাচ্ছি সাক্ষাৎকার পর্বে।
5: একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নেব সাক্ষাৎকার। সেই বিষয়টি হলো পলিথিনে পরিবেশ

आकाशवाणी चायमासा आखड़ा दो चेनो कना एफएम चेन तुरंग रे मीत से मीत गेटुड एआई मेगा हर्ट्स कोन ए हो बकना संतरी आखड़ा आखड़ा ए मणांग ते रेडियो आजो में सनाम बेहम सिको आलिंग बडा हंसदा तेकिन सेट कोन लासाने जोहार जतो को गे तेहिना आखड़ा रे सागुन दराम नोई दो सितंबर महीना गे एआई महित 12000 पार गे तुरुई सेरमा तेहिन दो सर्दी महा कना बेहम सिको तुबे चिलका बिना पया पालन जाओ लेका गे पण हेती मेढ़ेट खटा ना पायरे बिना कर पुआ माँ जो तो को सार को सागुन को आर ना पायरे बन ताहिन माँ बुया मिसी को तेहिन आकड़ार पुना जम संगिया गालो तुति आर किची ना पाय सेरे निमान को तो वे दलानी प्रथम रे भांजम लगे गालो विश्वकर्मा बुंगा इदी कते बार को कथा बुया मिसी को विश्वकर्मा बुंगा दो सेरमा पिची कन्या संक्रांति मतलब गे एआई सितंबर रेको मनावा विश्वकर्मा बुंगा दो बुंगा कोई मिस्त्री आर नुआ धरती बनावत केनाय नुआ बुंगा दो खास करते इंजीनियर शिल्पकार कारीगर दुकान चलाव को आर कारखाना मालिक को विशेष रूप तेको बुंगाया उनका गे जहां गाड़ी मोटर आर मशीन चला कना उना नापाय सही चला मा उना लगी विश्वकर्मा बुंगा बो बुंगाया मेसिन आलो खराबमा आर लगन आलो रापुदमा अब भारत दिसम रे दो विश्वकर्मा बुंगा आडीगे महतना बयामसी को मान्यता मेना जे विश्वकर्मा बुंगा गे पहिल वस्तुकर लेखाते मनावे ताहे आकिन गे हथियार शस्त्र राजुड़ा आर बाजार कोकिन बनाव ले ताहे दो उनाते नीत हो आकिन गे को बुंगा आकिन कना बयामसी को तेहेना दिन दो विश्वकर्मा बुंगा इदीते मिशिन को उना बांग को चलाव तेहेना दिन दो होड़ को आकुआ कामी जगारे आर जहां अवचार को मेना आनंग उना को सफा सुथर गेज गुरी गते बुंगाया को आर कामी रे हिजुगा समान चे साधन को सरावा विश्वकर्मा बुंगा टेन को नेहरवा जे कामी बेस सही चलामा आर सामान को आलो बड़े प्रापुदमा बयामसी को नित खाटो मचाते विश्वकर्मा बुंगा इदी कते बारपोत कथा बना जम गया बयामसी को दिला नित बन रसका जुगा में लांगड़ा सेरिंग इदी कते सपड़ावा का को राम टुडू आर सौतेन को

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ
1: ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱢᱩᱱᱟᱯᱷᱟ ᱵᱟᱥ ᱮᱠ ᱠᱞᱤᱠ ᱢᱮ ᱠᱟᱢᱟᱞ ᱦሟ
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
5: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
4: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ᱵᱚᱭᱦᱟᱢᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱯᱩᱱᱚᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ
8: ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱯᱩᱱᱚᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱵᱷᱮᱴᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱭᱩᱴ ᱵᱟᱨᱮᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱤᱧ ᱯᱤᱮᱭᱤᱪᱰᱤ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱟᱨ ᱢᱮᱨᱚᱢᱟᱜ ᱫᱮᱠᱵᱷᱟᱞ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱞᱤᱧ ᱮᱦᱚᱵᱮᱜᱼᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱵᱷᱤᱲᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱝᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱞᱛᱟ ᱯᱷᱤᱨᱛᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱤᱲᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱦᱟᱛ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱵᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱠᱟᱹᱡ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱫᱷᱟᱨᱟᱛᱮ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱫᱷᱟᱨᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱯᱩᱸᱡᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢ ᱯᱩᱸᱡᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱮᱢᱱᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱥᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱨᱤᱰ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱛᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱥᱩᱴᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱚ ᱜᱨᱳᱛᱷ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱱᱟᱥᱞ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱵᱨᱤᱰ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤᱨ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱵᱞᱮᱠ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱟᱨ ᱵᱤᱴᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱨᱤᱰ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱚ ᱜᱨᱳᱛᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱨᱤᱰ ᱢᱟ ᱟᱨᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱵᱟᱨᱤ ᱡᱚᱢᱱᱟᱵᱟᱨᱤ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚ ᱵᱞᱮᱠ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱟᱨ ᱵᱤᱴᱮᱞ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱵᱨᱤᱰ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱠᱳᱱᱚᱢᱤᱠᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ 68 ᱢᱟᱫᱟᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ 20 ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱮᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ 20 ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱨᱮ 68 ᱢᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ 68 ᱢᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱥᱤᱭᱳ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱨᱮᱥᱤᱭᱳ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱮᱫᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣᱢᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱨᱚᱢ 10 ᱠᱷᱚᱱ 12 ᱥᱠᱳᱭᱟᱨ ᱯᱷᱤᱴ ᱡᱟᱭᱜᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱢᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱢᱟ ᱤᱱᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱨᱳᱛᱷ ᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟᱭ ᱧᱟᱢᱢᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱯᱟᱨᱯᱟᱥ ᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 2 ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱰᱤᱵᱤᱡᱚᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱱᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱫᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱤᱥᱤ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱟ ᱵᱤᱥᱤ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱵᱤᱥᱤ ᱯᱨᱳᱴᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱭᱳ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱚᱢ ᱪᱟᱵᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ 2 ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱨᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱫᱚ 2 ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱰᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱮᱱᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱵᱩᱡᱽ ᱪᱟᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱠᱚ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱮᱱᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱮᱱᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ 1 ᱯᱩᱣᱟᱹ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱮ 1 ᱠᱮᱡᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ 250 ᱜᱨᱟᱢ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱜᱨᱳᱛᱷ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱡ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ 100 ᱠᱮᱡᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ 50 ᱠᱮᱡᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮᱥᱤᱭᱳ ᱛᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ 100 ᱠᱤᱞᱳ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ 100 ᱠᱤᱞᱳ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 30 ᱠᱤᱞᱳ ᱢᱟᱠᱟᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚᱱᱰᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱤᱥᱟᱹᱣ ᱡᱚᱱᱰᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱨ 40 ᱠᱤᱞᱳ ᱜᱮᱦᱩᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱤᱞᱠᱟᱹ ᱛᱮᱫ ᱜᱮᱦᱩᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱯᱤᱥᱟᱹᱣᱟ ᱜᱮᱦᱩᱸ ᱪᱷᱤᱞᱠᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ 40 ᱠᱤᱞᱳ ᱜᱮᱦᱩᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱤᱞᱠᱟᱹ ᱟᱨ 10 ᱠᱤᱞᱳ ᱵᱟᱫᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱤᱞᱠᱟᱹ ᱟᱨ 15 ᱠᱤᱞᱳ ᱪᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱳᱞᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱤᱞᱠᱟᱹ ᱟᱨ ᱢᱤᱱᱟᱨᱮᱞ ᱢᱤᱠᱥᱪᱟᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱢᱤᱱᱟᱨᱮᱞ ᱢᱤᱠᱥᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 4 ᱠᱤᱞᱳ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱟᱨ 1 ᱠᱮᱡᱤ ᱱᱟᱢᱟᱠ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨᱟᱜ ᱜᱨᱳᱛᱷ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱳᱰᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱭᱨᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ 1 ᱠᱮᱡᱤ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ 100 ᱠᱮᱡᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱱᱤᱡᱮᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ 100 ᱠᱤᱞᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱤᱠᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱨᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱵᱷᱚᱨ ᱨᱮ 250 ᱜᱨᱟᱢ ᱢᱟᱛᱞᱟᱵ 1 ᱯᱩᱣᱟᱹ ᱢᱮᱥᱟᱭᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱤᱱᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱨᱳᱛᱷ ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟᱢᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱨᱟᱠᱷ ᱨᱟᱠᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱮᱱᱴ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱚᱦᱚᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱟᱞᱚᱠ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟᱞ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱭ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱭᱞᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟ ᱯᱟᱭᱞᱟ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱤᱯᱤᱟᱨ ᱯᱤᱯᱤᱟᱨ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱛᱤᱱ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱥᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱢᱤᱫ ᱨᱤᱯᱤᱴ ᱤᱫᱤᱭᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟᱭᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱯᱤᱯᱤᱟᱨ ᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱵᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ 3 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ 3 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱤᱨ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱚᱱᱠᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱢᱮ ᱡᱩᱱ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱮᱦᱚᱵᱟ
0: ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱢᱤᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱯᱩᱨᱱᱚᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱛᱥᱚᱞᱞᱚ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱵᱟᱨᱯᱩᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱞᱟᱱ ᱯᱚᱞᱟᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱮᱠᱷ ᱨᱮᱠ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱹᱜᱩ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱥᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱡᱳᱜᱽᱫᱟᱱ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ 115 ᱵᱚᱨᱚᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱵᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱤ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱭ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱵᱷᱮᱨᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱥᱟᱨᱤᱨᱤᱠ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱥᱤᱠ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱵᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱪᱪᱷᱩᱠ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ 4000 ᱴᱟᱠᱟ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱜᱚᱲᱚ ᱨᱩᱯ ᱛᱮᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱤᱞᱞᱟ ᱵᱟᱞ ᱠᱟᱲᱭᱟᱱ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱠᱟᱭ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 9955131364 ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 9090070048 ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱧᱚᱜᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ

अभी आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार और उसके बाद ज़िले में आजकल। कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जाँच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
4: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
3: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
4: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
3: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
5: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
8: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
9: कंडो,
8: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
10: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
11: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: बहन
12: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, थोड़ी देर बाद हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्म दिवस पर आज से देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। रांची, जमशेदपुर समेत राज्यभर में रक्तदान शिविर और सेवा कार्यक्रमों का आयोजन। नक्सली अभियान में एक और बड़ी सफलता। सारंडा और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय रहे माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल ने पश्चिम बंगाल में किया आत्मसमर्पण। गिरिडीह में दिवंगत मंत्री सुदेव कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कई मंत्री और मुख्य सचिव के मौजूदगी में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राज्य में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा का महापर्व। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने की रांची के नामको में राज्य स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा। और राज्य के प्रतिभावान ऑलराउंडर शिखर मोहन का रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में हुआ चयन। ईरानी कप में ऋषभ पंत के साथ खेलेंगे मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। इस उपलक्ष्य में रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। श्री मरांडी ने श्री मोदी के 25 वर्षों के जन सेवा काल की सराहना की।
1: लोगों को लगता नहीं था कि ये काम कभी संभव हो पाएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्साह दिखाया। जैसे देश में जम्मू कश्मीर में 370 था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 370 धारा समाप्त हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा को समाप्त कर दिया।
0: पीएम मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान के तहत आज हम बात कर रहे हैं नक्सल उन्मूलन की। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से प्रभावित होकर करोड़ों के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे सुदूर क्षेत्रों में शांति और विकसित भारत की राह आसान हुई है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और सुरक्षा बलों के चौतरफा अभियानों के कारण नक्सलियों का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता ने राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद के खात्मे के साथ साथ आम जनजीवन को नई दिशा दी है।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। गांव वीरान हो रहे थे, लोग डर के साये में जीते थे, लेकिन फिर बदलाव की एक शुरुआत हुई। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। कई तो ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन में थे, अब वे गांव में ही सम्मान से जीवन जी रहे हैं।
2: सुरक्षा बलों की आक्रामक कार्रवाई के साथ साथ सुदृढ़ पुनर्वास नीति के चलते आज राज्य के सुदूर बूढ़ा पहाड़ से लेकर सारंडा के जंगलों तक शांति लौट आई है। कभी उग्रवाद की मार झेलने वाले सारंडा क्षेत्र के नागरिकों ने इलाके में लौटी शांति और विकास पर अपनी खुशी जाहिर की।
4: मेरा नाम रोया नागरी है, टोंटो प्रखंड क्षेत्र से हूँ। और नक्सलाइट अभी खत्म होने के बाद विकास पटरी में आ गया है। विकास बीएसएनएल का टावर था, ना जियो का टावर था, ना एयरटेल का टावर, किसी भी कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत था।
5: पश्चिम सिंहभूम चैमासा से रवि बिरोली। हमारे क्षेत्र में पूर्व में नक्सल बहुत ज्यादा अपना पैर फसारा हुआ था, लेकिन वर्तमान में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब जो है क्षेत्र में विकास की गंगा बहने वाली है और जगह जगह जो रोड पुल पुलिया जो है ये बनना शुरू हो चुका है। अब विकास जो है अच्छी गति पकड़े लिया।
2: नक्सलवाद के अंत में राज्य के सुदूर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में चौतरफा विकास के नए द्वार खोले हैं, जिससे यहाँ के लोग भी अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दौड़ में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए चाईबासा से दिलीप बैनर्जी के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। असीम मंडल पर झारखंड और ओडिशा सरकार द्वारा कुल 2,20,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड के आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने असीम के पश्चिम बंगाल में सरेंडर करने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह पहुंचे और दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते थे और उनका निधन राज्य के लिए बड़ी क्षति है।
6: झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक ये बहुत बड़ा क्षति है जिसकी भरपाई करना बहुत ही कठिन है और बतौर मंत्री रहते हुए जो सक्रियता थी अभी भी मन मानने को तैयार नहीं कि वो हमारे बीच नहीं।
0: इस दौरान सरकार के कई मंत्री और मुख्य सचिव भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी कार्यक्रमों में इसके केवल शुरुआती दो छंद गाने की अनुमति मांगी है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे कांग्रेस के तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया है।
7: है कि जिस तरह से इन लोगों के द्वारा मतलब राष्ट्रीय गीत के साथ जो राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये बिल्कुल ही सही नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय में जब गाया जा रहा था तो बीच में ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने उस गाने को लेके कितना बौखलाहट दिखाई दिया।
0: पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना राज्य में कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रही है। इसके तहत गुमला में बांस शिल्पकारों को आधुनिक टूल किट मिली है जिससे उनके उत्पाद रांची के मेलों तक पहुंच रहे हैं।
8: मैं पीएम विश्वकर्मा के तहत मैं मोदी जी को बहुत बहुत उसका जन्मदिन में धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा में मुझे जो लाभ मिला है जैसे ट्रेनिंग करके, जैसे मुझे टूल किट मिला है 15,000 का, उसके बाद में मुझे काफी सारा लाभ मिला है उनके तरफ से, तो जैसे कि लोन मिला है और उन्हीं के अनुसार से मैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रही हूँ।
0: वहीं हजारीबाग में कुम्हार महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक चाक मिलने से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण तेज हुआ है जिससे उनकी आय में भारी बढ़ोतरी हुई है।
9: हम लोग को बहुत फायदा हुआ और अभी भी घर बैठे रोजी रोजगार कर सकते हैं। और फिर मतलब कभी हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जब यहाँ पीएम विश्वकर्मा का योजना का ट्रेनिंग हुआ तब से बाहर भी निकलने लगे, अपना घर भी संभालने लगे और रोजी रोजगार भी करने लगे।
0: राज्य भर में आज निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से की जा रही है। रांची के नामकुंभ में आयोजित भव्य महोत्सव में कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव ने नामकुंभ में जल्द ही एक नया कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की बड़ी घोषणा की।
10: हम लोग नामकुंभ में भी कौशल विकास का केंद्र खोलेंगे ताकि उसमें हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ेगी तो उनको बढ़िया जॉब पूरे झारखंड में मिल सकता है, क्योंकि काफी उद्योग की संभावना है। जो हमारे लोग बाहर जाता है, बाहर का पलायन को रोक करके हम उसको यहां पे रोजगार में सम्मिलित कर सकते हैं, ये हम लोगों सरकार की पॉलिसी है।
0: रांची स्थित जेवीएम श्यामली स्कूल के पूर्व छात्र और झारखंड के प्रतिभावान ऑलराउंडर शिखर मोहन का चयन प्रतिष्ठित ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में हुआ है। बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिनर शिखर अब ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर आज से देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। रांची जमशेदपुर समेत राज्यभर में रक्तदान शिविर और सेवा कार्यक्रमों का आयोजन। नक्सली अभियान में एक और बड़ी सफलता, सरंडा और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय रहे माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल ने पश्चिम बंगाल में किया आत्मसमर्पण। गिरिडीह में दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्री और मुख्य सचिव की मौजूदगी में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राज्य में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा का महापर्व। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने की रांची के नामकुंभ में राज्य स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा। और राज्य के प्रतिभावान ऑलराउंडर शिखर मोहन का रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में हुआ चयन। ईरानी कप में ऋषभ पंत के साथ खेलेंगे मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
1: मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
2: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
1: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
2: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा।
5: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
6: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
7: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
8: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
7: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
8: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
7: माहवारी प्रारंभ होती है,
8: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
7: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
9: जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। मेरा युवा भारत सिमडेगा की लेखा अधिकारी सोरिना टेटे ने 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं से क्विज में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि
2: इसका ये प्रथम चरण है और यह स्वामी जी जो युवाओं के आदर्श पुरुष कहे जाते हैं 12 जनवरी 2027 को जब हम लोग इसका राष्ट्रीय स्तर पर मनाएंगे उसका यह एक तरह से तैयारी है और यह पहला चरण है और ये हर एक जिला में ये क्विज कंपटीशन कराया जा रहा है और इसमें हमारे जिले के 15 से 29 साल के हमारे छात्र भाग लेंगे, प्रतिभागी भाग लेंगे और उसमें से जो चयन होकर आएंगे उनका 500 शब्दों में निबंध प्रतियोगिता होगा जिसे वो अपलोड करेंगे और उसमें जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको फिर राज्य स्तर पर शामिल होने का अवसर मिलेगा और उसमें और जो बेहतरीन अपना प्रदर्शन करेंगे उनको फिर राष्ट्रीय स्तर पर शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।
1: स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज को लेकर चल रहे महाप्रयोग में सिमडेगा के वैज्ञानिक सिद्धार्थ प्रसाद भी शामिल हैं। पिछले दिनों सिमडेगा आए वैज्ञानिक सिद्धार्थ प्रसाद ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि
3: तो जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो एक विश्व का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है उसमें ये जिनेवा में है सर्न में स्विट्जरलैंड में और इसका मुख्य जो पहलू है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा कि हम लोग जो सबसे एक्सेप्टेबल जो हाइपोथेसिस है या थ्योरी है वो ये कहती है कि बिग बैंग हुआ जो कि एक महाविस्फोट आप उसको कह सकते हैं। बिग बैंग के बाद ही इसके बाद ही सारे के सारे ब्रह्मांड का इस क्रिएशन हुआ उत्पत्ति हुई।
1: सिमडेगा जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्न और मध्यम वर्ग के कारोबारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला प्रबंधक सन्नी अभिजीत मिंज ने कहा कि
4: अभी तक सिमडेगा जिला में टोटल 14,279 लाभुकों को मुद्रा योजना के तहत आच्छादित किया गया है और उसके तहत 168 करोड़ से अधिक का लोन उनको दिया गया है और पिछले वित्तीय वर्ष में 7,822 अकाउंट में 122 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है जिसमें
1: सिमडेगा जिले में आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ की गई। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों गैर सरकारी प्रतिष्ठानों बस स्टैंड ऑटो स्टैंड आदि में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करते हुए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की गई। मनोज कुमार सिन्हा मनु आकाशवाणी समाचार सिमडेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

यह आकाशवाणी चाईबासा है। कार्यक्रम आपकी पसंद में सबसे पहले सुनते हैं साजना सरगम और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है गुप्त और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ग्राम बादवी से कैलाश कुदादा, नारायण कुदादा, कृष्णा, मोहन, बसंत और ज्योति कुदादा। धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, सरोज और शानू ध्रुवंशी।

विश्वात्मा, यह है का गीत। गुलकारा हैं साधना सरगम और सुनना चाहते हैं ग्राम पजोनिया से सत्येंद्र संसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, न्यू कॉलोनी टुंगरी से सुशील कुमार सिंह, संध्या देवी, पंडित आर के पाठक, अनिता मिश्रा, मनीष मिश्रा और सुभाष मिश्रा, चांडिल से तुलसीदास महतो और औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश।

सुन रहे थे फरमाइशी नगमे, कार्यक्रम आपकी पसंद में। ये आकाशवाणी चाईबासा है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: अभी हम आनंद ले रहे थे हो लोकगीत का सुखमती बिरोली और साथियों के स्वर में। इस लोकगीत के बाद आइए अब हम सुनते हैं यह संदेश।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहाँ खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
4: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
2: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
5: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मीलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
2: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
6: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी, जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
2: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
7: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
2: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
8: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
2: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
0: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, आइए अब हम जानकारी लेते हैं बागवानी के साथ महोगनी वृक्ष की खेती कैसे करें। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं जुरेंद्र देवगम और उनसे बातचीत कर रही हैं सुनीता हास्ता।
9: तीसिन किसान भाई को अली पंपड़ा अली तुम जुरेंद्र देवगम हाथ पैर पंडित देवगम कुंतली पोस्ट ऑफिस बरकुंडी ब्लॉक सदर चेम्बर्स अली तीसिंग बागान साथ साथ रे दारू को आशा दारू रुआ लगे तो दारू अली मोगनी इना अली 900-950 दारू लिंग बीडे केड़े अली 1 साल उपाय दारू दारू रकाबिया 10-15 फीट जो एनते अली नैन दारू गनों अली चिरगेल के डेते नैन दारू

0: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
1: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
1: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
5: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
4: पोहामिसी को नितो बोन अंजमे तहकना मिट बार किछु संदेश को नवा संदेश तायम देला बोन अंजम लिया नवा ओडिया लोकगीत दिलीप निषाद आर साउतेन को सपड़ा सेरेंग।

0: किसान भाई बहनों, इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। अब तक के लिए आशा मनी गोप और
1: सुनीता हाजदा दिकिन विदा माले पे
0: जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम के बाद 8 बजे आप सुन सकेंगे चीयर फॉर भारत। ये आधारित है 20वें संस्करण एशियन गेम्स 2026 के। ये संस्करण जापान में हो रहा है।

0: एक ट्रैक, एक कोट, एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन। जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचता है। आईटी नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैट पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेंद पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आकाशवाणी पर एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहाँ से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टारडम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है, 74 खिलाड़ियों का, और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो, जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटे। जैसे अविनाश साबले हैं, स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है, पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी, तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे, जिनसे भी उम्मीद होगी क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमेना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति यारा जी वापसी करी है, राष्ट्रमंडल खेलों में वो भार रही थी, 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे, जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है, अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर, गुलवीर है जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, तो 1500, 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे, डेकाथलन में तेजस्वीन शंकर है और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है, तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।

0: एंथन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया। चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए, ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
1: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाले की जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है, जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था, उसका एक्लमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है तो। लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का, एक्लमेटाइज करने का ये व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहां जाके कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहे हैं।
0: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफी उम्मीद है। सर्वेश कुशारे भी एक एथलीट हैं जो हाई जंप में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम है उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में। 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे। तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
0: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका स्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
1: देखिए, अब नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाऊ से, उसके बाद में मैं बोलना चाहूंगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
0: हाई जंप में
1: 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहां पे वो 8th आई है 1.77 मीटर। तो काफी लोग पूछ रहे थे क्या वो कॉम्पिटिशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th आई है 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रिटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आईची नगोया एशियन गेम्स।
0: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं, उम्मीदों के

0: स्टार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
1: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहाँ पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहाँ पार पाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं। विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहाँ पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया कभी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले। और यहाँ से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
0: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
2: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पे रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है एशियन गेम्स पे। विमेंस टीम अगर इतना अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे फिफ्थ आ सकती है, तो मेंस टीम भी कहाँ पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहाँ पे मेंस हॉकी टीम से काफी एक्सपेक्टेशंस है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखते हुए काफी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जीफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे एसीटीसी के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफी एक्सपोजर कैंप्स बोथ मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुलटन की जो साइड है उनको भी काफी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
1: फोर्थ प्लेस
2: फिनिश जब हम लोग हॉकी वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए, और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में एक्लेमेटाइज और भी करने में वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं।
0: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से, इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम पांचवें स्थान पर रहे, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 21-22 साल की 11 लड़कियां, तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शोर्ड मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास

0: अन्नान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है, लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है, और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा, सविता लेजेंडरी प्लेयर है और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शोर्ट मारिन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मतियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
1: चलिए हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेंस डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंह भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी हैं, अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है दो बार की पीवी सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा, चिराग और सात्विक, पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जौली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
1: सायंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है, और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें। किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: जैसे अभी बताया गया कि त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसा करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हांजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग, जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो और एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस, उस मोरल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद में आऊंगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने

0: पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था, वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है, लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
1: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण, तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का, लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
0: जी हाँ, सायंतन पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनामदार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए, लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली, महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
2: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत के बाद जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले पीकेएल की बात करूंगा आपसे, 12 खिलाड़ी जो है पीकेएल से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का पीकेएल में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है, सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं वो यू मुंबा के कैप्टन भी है, तो काफी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था, उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है वहां पे भी एक टीम का बढ़िया से ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेन्स टीम का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट है जो मेन्स टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेन्स टीम का स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कंपटीशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल, बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है जो स्वर्ण होने जा रहा है।
0: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थी। मोना, यहाँ पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
1: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए, तो 4 महिलाएं, वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार 3रा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है, पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और 4थे स्थान पर रही, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में, और हरजिंदर कौर है 69 किलो में, तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
0: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 चीनी जोड़ी को हराकर विमेन्स डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी, क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले

0: कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं। दिया चिताली ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
1: देखिए, अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफ़ी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको। गुजरात में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में काफ़ी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था। कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है, जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल्स स्टैंडिंग्स में। तो ये काफ़ी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनु शाह, दिया चताले जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहा है। तो शरत कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनु शाह, मानव ठक्कर, दिया चताले, इन तीनों में से काफ़ी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है, हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था जैसे आपने जिक्र किया। तो इनसे आई थिंक मेंस टीम, वुमेन्स टीम, काफी सारे कॉम्पिटिशन में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
0: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। जी हाँ, क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी उम्मीद यही है। टक्कर कहीं देखती है मोना?
2: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
0: सायंतन, कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
1: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते। ऐसे कुछ लोग, मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे। क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते, एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पे रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहा है और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
0: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मोना पार्थ सारथी, आपका, सायंतन मोइत्रो, आपका बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया आनंद,
1: थैंक यू सो मच।
0: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी चाईबासा है, पेश खिदमत है आज का रजनीगंधा कार्यक्रम। इसमें सबसे पहले आइए सुनते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज़, फिल्म का नाम है चलते चलते। सुनना चाहते हैं टाटा कॉलेज कॉलोनी चाईबासा से डॉक्टर धर्मेंद्र रजक, डॉक्टर भाग्यश्री कर, रामपति देवी, आशा और गुनू, महुलिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि रविवारी, दीपक, राहुल, गुरुचरण नायक, अनुसुया नायक और देवाशीष नायक।

चश्मे बद्दूर। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें हेमंती शुक्ला और यशुदास की। सुनना चाहते हैं सरायकेला से निकिता, सुजाता, भारती, शिवम, उत्तम, उज्जवल, मिंटू, समीर, उत्पला और डालीमा। बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू।

दाग। सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा। गुलकारा हैं लता मंगेशकर, सुनना चाहते हैं चांदिल से तुलसीदास महतो, दतंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से शालिक पुजारी, रायपुर से जावेंद्र कुमार ध्रुव और न्यू कॉलोनी टुंगड़ी से पंडित आर के पाठक।

इस नगमे के साथ ही समाप्त होता है आज का रजनीगंधा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 होने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय UPI के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में UPI लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच UPI आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
1: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
6: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
5: इस MyGov प्लेटफॉर्म इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
7: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1 lakh crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the scent. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the fifth edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है
8: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.
1: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है और अब ये भी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है
8: Mr. Modi said the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. He said 12 semiconductor projects have so far been approved and more projects will be approved in the next phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event this afternoon, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said investment commitments worth around foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment and develop future-ready talent. The government has refuted allegations that the Minerals Affairs Ministry said the country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and on the basis of evolving market dynamics. The statement came amid the passage of a bill by the US House of Representatives that will allow President Donald Trump to impose tariffs of up to 100% on countries for procuring Russian crude oil. The minister said this issue has been discussed at high levels in recent months with various US interlocutors. Its potential implications for not just the bilateral relationship but also the international energy market have been very clearly articulated by the Indian side. The government made it clear that it will work closely with Indian trade and industry bodies to deal with the implications of these developments. The House of Representatives passed the bill in a 262 to 159 vote last evening. It will become a law once the US President signs it. External Affairs Minister Dr. Jaishankar has said that India stands firmly committed to Bhutan's progress and prosperity. Dr. Jaishankar stated this in a social media post after joining Bhutan Prime Minister Shering Thobge and Foreign Minister Dien Dongyel in launching the second phase of international UPI for Bhutanese citizens visiting India. Dr. Jaishankar is on a two-day visit to Thimphu in Bhutan. The External Affairs Minister said, together with the use of UPI in Bhutan, this completes two-way UPI-based digital payment connectivity between India and Bhutan. They also witnessed exchange of MOU and extending the Nehru Wangchuk Scholarship Scheme for higher education by Bhutanese students at Indian institutions. The External Affairs Minister also handed over 54 Made in India electric vehicles to Prime Minister Thobge. This is Akashwani giving you the news.
9: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वो तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम

0: बात करेगा, जबकि अमरीका ने रूस की खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयात करने का बिल मंजूर किया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है। और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल एतमाद मैन्युफैक्चरिंग मराकज की तलाश में है और मुल्क इस जरूरत को पूरा करने के लिए मुस्तकिल तौर पर खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अहम सनअतों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगी और सप्लाई के बदलते हुए चैलेंजों के दरमियान नए मौके फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बात नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया 2024 का इफ्तिताह करते हुए कही।
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: वजीर आजम मोदी ने उजागर किया कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से वसी हो रहा है और इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के नए मौके फराहम कर रहा है।
1: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी। इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी। अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की। ऐसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चीप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है और अब ये भी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत की मईशत तरक्की कर रही है जबकि मुल्क पर दुनिया का एतमाद भी बढ़ रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में मुनक़िदा ब्रिक्स सरबरा मीटिंग का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने कामयाबी के साथ इस सरबरा मीटिंग की मेजबानी की जहां नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि ये भारत पर बढ़ते हुए आलमी एतमाद का एक और सबूत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि अगला कदम सेमीकॉन 2.0 के जरिए सनअत को फरोग दिया है जो 6 अहम सुतूनों सेमीकंडक्टर डिजाइन, मशीनरी और मवाद, सिलिकॉन कंपाउंड, लॉजिक फैब्रिकेशन और तरक्की पर मरकूज है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत का मकसद सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में चिप डिजाइन के सेक्टर में कम से कम 200 स्टार्टअप्स और कंपनियों की मदद करना है। बाद में नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 2.0 इको निजाम के तहत अब तक तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी के वादे मौसूल हो चुके हैं। रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर अमरीका की जानिब से 100% महसूल आयात करने वाले कानून के मंजूर होने के बाद भारत ने आज कहा कि वो अपने माशी मफादात के तहफ्फुज़ और तवानाई की जरूरतों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। वज़ारत खारजा ने कहा कि भारत अपने 140 करोड़ शहरियों की तवानाई की जरूरतों को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और मुख्तलिफ ज़राए और बदलती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तवानाई हासिल करने का सिलसिला जारी रखेगा। वज़ारत ने कहा कि हालिया महीनों में इस मुद्दे पर अमरीका के आला सतही हुकाम से बातचीत हुई है। भारत ने दो तरफा ताल्लुकात पर उसके मुमकिन असर वाज़े कर दिए हैं। वज़ारत खजाना कल से नई दिल्ली में विकसित भारत की जानिब सफर के लिए माली एयानत के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी।

खान ने एहलकारों को हिदायत दी है कि वो उन मौकों की निशानदेही करें कि किस तरह विकसित भारत जी राम जी स्कीम गाँवों को तरक्याफ्त और खुदकफील बनाने में माविन साबित हो सकती है। स्कीम से मुतालिक कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने जोर देकर कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ इस स्कीम को पायदार असासे कायम करने और देही बिरादरी के लिए देरपा फायदे और देही मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए कारामद साबित होना चाहिए। जनाब चौहान ने सभी अहदेदारों से अचानक मुआयना करने की हिदायत की ताकि स्कीम के तहत शुरू किए गए कामों का जायजा लिया जा सके। कोयले की वजारत ने आज नई दिल्ली में कमर्शियल कोयला कानों की नीलामी के 16वें दौर का आगाज किया। इस मरहले में 25 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी की जा रही है जिनमें 21 काने मुकम्मल तौर पर और 4 जुजवी तौर पर दरियाफ्त शुदा हैं। ये काने कोयला पैदा करने वाली 9 रियासतों में वाक़ हैं। वजारत के मुताबिक आज की तारीख तक कुल 147 कोयला कानों की नीलामी की जा चुकी है जिससे सालाना मुतवक्का आमदनी 47,500 करोड़ रुपए से ज़ायद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE से कहा है कि वो छठी जमात के तलबा के लिए लाजमी तौर पर 3 जबानों की पॉलिसी को 2027 के तालीमी सेशन तक मौखर करने पर गौर करें ताकि तलबा को नए निज़ाम में मुंतकिल होने में आसानी फराहम हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश आज पूरे मगरबी बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर ख़वातीन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अन्नपूर्णा योजना मगरबी बंगाल में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के अमल को तेज करने में अहम रोल अदा करेगी। मर्दों की क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3 मैचों की बैन अलाकवामी T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारत ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए हैं और अफगानिस्तान को जीत के लिए 222 रन का निशाना दिया है। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत शुरुआती 2 मैच जीतकर पहली ही सीरीज अपने नाम कर चुका है। और अब खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर पेश किया। सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के वादे मौसूल हुए हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि वो तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा जबकि अमरीका ने रूसी खाम तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% महसूल आयद करने का बिल मंजूर किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम जनाब मोदी की 76वीं सालगिरह और अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में 1 माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है। और मर्दों के क्रिकेट में दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाकवामी मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Hawaii.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
2: नमस्कार। स्वच्छ भारत में जन भागीदारी, राष्ट्रव्यापी देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत आज हुई है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आज देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये कितना बड़ा अभियान मानते हैं, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका समापन होगा, इसके क्या मायने हैं और आम लोगों के लिए ये किस तरीके से आंका जा सकता है?
3: ये अच्छी बात है कि इस साल एक बार स्वच्छता ही सेवा हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत आज नहीं है। 2014 में लाल किला की प्राचीर के ऊपर से उस टाइम नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को आह्वान दिया था और उस टाइम लोगों को चौंका दिया था कि हमें देश को स्वच्छ करना चाहिए, हमारी आदत बदलना चाहिए और हमारे जो बहन माँ और जो भी महिलाएं हैं उनकी डिग्निटी और सिक्योरिटी के खातिर, बीमारी से बचने के खातिर देश को स्वच्छ करना अति आवश्यक है और इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। तो 14 से लेकर अभी तक 26 तक 12 साल हो गया ये आंदोलन चलता आ रहा है और ये पहले तक कभी नहीं था। और मैं अगर कह सकता हूँ कि हमारे भारत की जो आजादी की लड़ाई है उस टाइम जो आंदोलन था उसके बाद अगर एक सचमुच के एक जन आंदोलन हुआ है तो मैं स्वच्छ भारत का मानूंगा। और प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में एक बहुत बड़ा चीज शुरू हुआ जो आज तक निरंतर चल रहा है, उसका नाम स्वच्छता ही सेवा, और वो आज 17 सितंबर को शुरू होता है। पहले 2 वर्ष के लिए हुआ करता था, जैसे कि स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है उस दिन उसका कंप्लीशन हुआ करता था, अभी इस बार 1 महीना है। लेकिन इसके पीछे जो होना है वो है कि ये जो स्वच्छता है या देश को स्वच्छ करने का जो मुहिम है ये जनता की है। गांधी जी ने बोला था कि भाई अपने हाथ में झाड़ू पकड़ो तब अपना आंगन और बाहर देश साफ होगा। ऐसे ही एक अंदर में इंसान और सारे सिटीजन सबका अंदर में एक निर्णय है कि हम खुद अपना आंगन, अपना जो बाहर गली सड़क और पब्लिक प्लेसेस सारे जगह स्कूल मोहल्ला सब कुछ साफ करेंगे, हम खुद ही साफ करेंगे सब मिलके ये 1 महीना खास कर आज से लेके। तो ये स्वच्छता ही सेवा, अपने जो श्रमदान करेंगे और जगह जगह सफाई करेंगे, एक मिसाल करेंगे, इसमें एक जोश आएगा। अपना स्वच्छता जो कार्यक्रम है जैसे कि 12 करोड़ शौचालय बने 2014 से लेकर आज तक, और घर घर से वेस्ट मैनेजमेंट का सारे घरों की जो है रोज आते हैं गाड़ियां आके घर से कलेक्शन होते हैं, वेस्ट रिकवरी और वेस्ट प्रोसेसिंग का बहुत कैपेसिटी बढ़ा है, बाहर जो कूड़े का शहरों की बाहर जो लैंडफिल बोलते हैं उसका संख्या भी कम हो रहा है, सारी चीज हो रहा है। लेकिन ये जो बात है स्वच्छता सेवा की जो 1 महीना है ये लोगों की कार्यक्रम, इसको दिखाने के लिए लोग खुद आकर बाहर साफ करेंगे वही चल रहा है। वो 17 से शुरू हुआ था, बहुत सफल रहा है, इसमें करोड़ों लोग हर साल जुड़ते हैं और होता है तरह तरह के समय में, कभी 1 हफ्ता कभी 2 दिन कभी कोई एक फंक्शन है सेरेमनी है या कोई ओकेजन है उसमें भी होता है। और इससे बड़ी और कंसंट्रेटेड फोकस तरीके से अगर कभी होता है, और इसमें स्वच्छ भारत मिशन के 2 मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय एक शहरी और आवास जो मंत्रालय है, उनमें से स्वच्छ भारत मिशन के जो रूरल और अर्बन दोनों पक्ष मिलके इसमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। लोगों के हाथ में काम है, लोग साफ सफाई करते हैं, सब जुड़ते हैं और एक सेवा मनोभाव से करते हैं और एक आंदोलन के तरीके से करते हैं।
2: इसमें जन भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, जागरूकता किस तरह से फैलाई जा सकती है और जागरूकता को सारी जनता आम तौर पे खुद से अपनाए, उसके लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार कितनी सफल हो पाई है इसमें?
3: इसमें सफलता तो आप अगर पहली फेज में माने, जैसे 14 से 19 पहला फेज था और 19 से 26 जो है इस साल का दूसरा फेज है स्वच्छ भारत मिशन का, पहला फेज में तो लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त था। उस टाइम मैं सोचता हूँ कि फेज 2 जो खत्म होने वाला है और फेज 3 जो आने वाला है ये जन भागीदारी को और थोड़ा बढ़ाने की स्कोप है, जो कि पहले था 14 से 19 तक बहुत जबरदस्त था। उस टाइम गांव गांव का शहर जैसा चल पड़ा था, उस टाइम लोग करीब करीब प्रण कर लिए थे कि हमारे गांव को या हमारे शहर को खुले शौच से मुक्त करना है, वो फोकस था उसमें खुले शौच से मुक्त जो ओपन डिफेकेशन फ्री बोलते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं को शायद ध्यान नहीं होगा 2014 में भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या जो है 60 करोड़ से 300 मिलियन था और वो दुनिया के सारे खुले शौच करने का 60% था। लगता था कि भारत में ये जो काम है ये कभी बन नहीं पाएगा। और टोटल एक्सेस और यूसेज जो टॉयलेट की था शौचालय की, मान लीजिए 1947 जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके 2014 तक करीब 38% था। लेकिन 2014 से 19 के अंदर इस खुले में शौच मुक्त हुआ। इसको मेंटेन करने का और आगे बढ़ाने का बहुत जरूरत है। और इसमें चार पी बोला जाता है। पहला पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, जो प्रधानमंत्री ने दिया और सारे लोगों को, जितने बड़े बड़े लीडर सबको इन्वॉल्व किया, सारे मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मंत्री, सारे गवर्नर, सारे एमपी, एमएलए, जितने बड़े बड़े सितारे हैं सब इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, सरकार ने काफी पैसा लगाए हैं सैनिटेशन के ऊपर, सफाई के ऊपर कभी इतिहास में इतना पैसा नहीं लगाया गया था, बहुत पैसा लगाया गया। तीसरा पी है पार्टनरशिप, सबको जुड़ा, ये सफाई जो है सबके काम हो गया, किसी एक का कोई मंत्रालय का काम नहीं है, सरकार के काम नहीं है, उसमें कॉर्पोरेट भी जुड़े, सिविल सोसाइटी जुड़े, मीडिया भी काफी जोर शोर से जुड़ा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उसमें दोनों का तालमेल रहा, लोकल गवर्नमेंट जैसे डिस्ट्रिक्ट और पंचायत और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े, सबका पार्टनरशिप से काम हुआ। लेकिन आखिरी पी जिसका की जिक्र आपने अभी किया वो है पीपुल्स पार्टिसिपेशन या लोगों की भागीदारी। जैसे अभी जो स्वच्छता सेवा हो रहा है उसमें यूनिट्स आइडेंटिफाई किया,

0: जो सबसे चैलेंजिंग शहर में खास करके ज्यादातर जो जो जगह एकदम जिद्दी की तरह से वहाँ गंदगी है उसको सब मिलकर साफ करेंगे, साफ नहीं तो माफ नहीं। बात है निपटान वेस्ट का, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का निपटान की बात हो रहा है, और ये शहरी इलाका में ज्यादा चैलेंजिंग है, गाँव में इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन और जैसे गार्बेज फ्री सिटी का रखा गया है टारगेट 4805 करीब शहर और नगर है, तो वो गार्बेज फ्री कब होंगे और थोड़ी समय लग जाएगा। लेकिन काम निरंतर प्रयास है, क्योंकि जैसे गांव के लोग जितना जुड़ गए थे शहर के लोग शायद इतना जुड़ नहीं पाए, और वेस्ट जो डिस्पोजल है या वेस्ट एग्रीगेशन, वेस्ट प्रोक्योरमेंट, वेस्ट रिकवरी हुआ, वेस्ट को कन्वर्ट करना हुआ, निपटान करना हुआ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी आते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज भी आते हैं। और मुझे इसे लग रहा है कि जिस तरह का लोगों की इसमें जुड़ाव था 2014 से 19 फेज वन में, ये जुड़ाव का और एक बार थोड़ा सा इसका रिवाइवल होने का बहुत आवश्यक है। ओपन डिफिकेशन फ्री तो एक बार हो गया, खुले सोच से मुक्त अभी, लेकिन उसके आगे पैरामीटर्स जुड़ जाते हैं कि क्या गांव में कचड़े का निपटान हुआ है, गंदे पानी के स्रोत बंद किया गया है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर वेस्ट का एक बार सेग्रीगेशन हो जाए तो फिर वो गोल्ड बन जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग और उसका वैल्यू उससे जो निकलना है बढ़िया से निकलता है, तो उसे वेस्ट टू वेल्थ निकलता है उसमें, क्योंकि वेस्ट जो है रिसोर्स है। ये सरकार ने खाली कहा नहीं है, ये तो अभी इंडस्ट्री और एंटरप्राइज धीरे धीरे आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना भरा हुआ है जिसको कचरा से कंचन बोला जा रहा है तो इसमें है। लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन है, चाहे इंडिविजुअल घर का हो या कोई बल्क जनरेटर है, चाहे जिसे रेसिडेंशियल सोसाइटीज हो, मॉल्स हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, वहां से कचड़े जब निकलेंगे ना तो वो सेग्रीगेट होकर निकलना है, नहीं तो सेग्रीगेट होकर नहीं निकलता है तो फिर बीमारी और गंदगी और दुनिया भर का लैंडफिल, ये सब का आशंकाएं बढ़ता है और यही सब होता है।
1: आपने बताया कि आम जनता को जिस तरह से इसमें भागीदारी करने की जरूरत है, तो कार्यालय स्तर ऑफिस स्तर पे भी बहुत सारे हैं आजकल, चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कचरे की भी बात हमें करनी चाहिए, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो ई कचरा प्रबंधन, बहुत सारे जो कार्यालय हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के कार्यालय हैं, उसमें भी जैसे कि सरकार ने कागज पे काम करने के बजाय वो जो ई प्रबंधन किया है या ई फाइलिंग का और ई ऑफिस का भी जो किया है, इससे कितना आसानी हुई है ये सारे कचरा निपटाने में?
0: बिल्कुल, अब इलेक्शन में, मैं इलेक्शन में भी कुछ दिन काम किया था, और इलेक्शन में जब बैलेट को निकाल कर ईवीएम लगाया तो कितना कागज की बचत हुआ, और कागज बचत होने का मतलब इतना खाली कागज की बचत नहीं होता है, उसमें एनवायरमेंट, ट्री, गच कटने का और कचरा, ये सब रिहायत मिलता है। तो ऐसे ही सरकार का एक प्रोग्राम चला हुआ है, मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री लेके कैसे ई ऑफिस होगा, कैसे कागज की यूज कम होगा, कैसे पुराना चीज निकाल के उसको डिस्पोजल होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोला, क्योंकि आजकल तो हम लोग का ऐसे हो गया ना, जैसे मोबाइल फोन बोलिए या लैपटॉप बोलिए या आईपैड बोलिए या टीवी बोलिए, जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इसको इतना चेंजेस आता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, नया नया वर्जन आता है, और लोगों का खरीदने का कैपेसिटी इतना बढ़ा है, लोग चेंज करते ही रहते हैं। जो पुरानी चीज है उसको अगर ठीक तरह से उसको डिस्पोजल नहीं किया गया, ठीक जगह में जाके उसको चैनल जिस तरह से आइडेंटिफाई होकर लगाइए, खाली कचरा डाल देने से नहीं होगा, निकाल के इसका एक साइंटिफिक तरीका है डिस्पोजल के लिए, नहीं तो टॉक्सिक हो सकता है, बहुत सारी चीज डेंजरस क्रिएट हो सकते हैं इसमें। और एक बात है, मेडिकल से जो वेस्ट होता है उसका भी एक पर्टिकुलर तरीके होते हैं डिस्पोजल होने का। एक बड़ा कंसेप्ट जो दुनिया में आया है और सरकार ने उसको बढ़ावा दिया है, नीति आयोग भी बढ़ावा देता है, ये RRR, ये वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, RRR, मतलब आप चीजों की, जैसे पहले जैसे गांधी जी कहा करते थे कि जरूरत के हिसाब से चीजें इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं कि स्प्लॉरिज कर रहे हैं आप, है ना। तो वो बोलते हैं कि रिड्यूस, आप जो सामान यूज करते हैं रिड्यूस, लेकिन आपको, मेरे को लगता है गांधीवादी बातों को सुनने के लिए शायद, और रिड्यूस करने के लिए कंजम्पशन को, ये कंज्यूमर दुनिया में रिड्यूस करने में तो ज्यादा आशावादी नहीं हूँ, क्योंकि देख नहीं रहा है। रीयूज, रिसाइकल जरूर हो सकता है, आप कुछ चीज को रीयूज करिए कोई तरीके से करके, उसका मिसाल बहुत है, जो जिस प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी वो जिक्र करते हैं, ये रीयूज रिसाइकल का, हर चीज रिसाइकल हो सकता है, हर चीज का रीयूज हो सकता है। तो हम हर चीज पर थोड़ा सा, जैसे मेटेरियल सराउंडिंग हमारा है, कंज्यूमेबल आइटम्स है, चाहे हमारा घर में हो, दफ्तर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस जहां भी हो, हम थोड़ा सा उसको यूज करने के टाइम थोड़ा सोचें। आपने शायद सुना होगा लाइफ स्टाइल और एनवायरमेंट, प्रधानमंत्री जी ने एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है भारत के अगुवाई में, LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, उसमें लगा है कि जितना आप जुडिशियस कंजम्पशन के ऊपर बात किया गया
1: जी,
0: आप जो कंज्यूम करें तो उसका स्वच्छता के साथ लिंक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आज के तारीख में, क्योंकि ये सब दुनिया भर का चीज इस्तेमाल करके बाएं दाएं फेंकते रहिए, या और भी खरीदते रहिए तो फिर तो कचरा जाएगा कहाँ, कचरा तो रहेगा ना, फिर उसको निपटान करने के लिए आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, उसमें भी खर्च होता है, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। रिड्यूस रियूज रिसाइकल जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लग रहा है कि एक दुनिया को सस्टेन करने के लिए अपना एनवायरमेंट के लिए भी बहुत काम देता है।
1: जैसे इस बार 1 अक्टूबर को 1 घंटा 1 दिन एक साथ देश भर में स्वच्छ श्रमदान की बात है। हमारे यहाँ ना बहुत अच्छे अच्छे सार्वजनिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, समुद्र तट हैं, मंदिर परिसर हैं, और अभी तो बहुत सारे जो इस तरीके से जो धार्मिक स्थल बने हैं वहाँ पे स्वैच्छिक श्रमदान करने की बात करिए। और आजकल का युवा भी जो है इसके बारे में काफी जागरूक हुआ है। आप देखिएगा अगर कहीं बार हम समुद्र तट पर जाते हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पे कूड़ा फैलाने के प्रति जो प्रवृत्ति है वो कम हुई है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
0: बिल्कुल, ये तो एकदम मिसाल सेटिंग के बारे में बात हुआ कि एक मिसाल बनेगा, उसमें रिकॉर्ड्स भी बनते हैं, कई बार रिकॉर्ड्स बने, इस बार होपफुली और भी बड़ा रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन एक सोच आइकॉनिक प्लेस प्रोग्राम शुरू हुआ था, देश में जितना बड़े बड़े जगह है जैसे तीर्थ और या भ्रमण की जगह जो है टूरिज्म सेंटर, उसी जगह में क्योंकि फुटफॉल आपने जैसे अभी कहा फुटफॉल बहुत ज्यादा रहता है और उसमें फिर कचरा की संभावना होता है, गंदगी का संभावना होता है। लेकिन आजकल लोगों को जागरूकता इतना आया है और लोगों की तरफ से जैसे सरकार या एजेंसी की तरफ से इतना कोशिश होता है, पहले सैनिटेशन को सामने रखा जाता है। अब कुंभ देखिए ना, उसके पहले तो स्वच्छ कुंभ इसको बुलाया गया था, उस टाइम कुछ भी करने के पहले सफाई का जैसे शौचालय का, ड्रेनेज का, सीवेज का, सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट जनरेट होगा, जैसे करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोगों का जो चीजें यहाँ से निकलेगा वहां से निकलेगा उसका कैसे बंदोबस्त है वो पहले किया जाता है। आजकल छोटे छोटे मंदिरों में भी देखेंगे जो फूल जैसे चढ़ाया गया, प्रसाद चढ़ाया गया, उसके बाद उसको रिसाइकल किया जाता है, फूलों को निकाल के ड्राई फ्लावर्स या उसमें अगरबत्ती या उस तरफ से जो कॉटेज इंडस्ट्री बनाया जाता है।
1: आज भी जो विभिन्न कार्यालय हैं आज स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई है, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में भी यहाँ पे भी स्वच्छता की कर्मचारियों की स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। ऐसा माना जा सकता है कि अब काफी लोग जागरूक होंगे इस बारे में।
0: एक प्रण है जैसे ये स्वच्छता एक दिन की बात नहीं है और स्वच्छता कोई जन्मगत आदत नहीं है, इस आदत को क्रिएट किया जाता है, ये एजुकेशन है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आज की तारीख में खत्म नहीं हो पाएगा, हमें इसको सस्टेन करना पड़ेगा, हमें उसको साथ साथ लेके अपने से अपने बच्चों का और आगे आगे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कचरे को निकालने का प्रक्रिया भी रोज होना चाहिए, सफाई को सिखाया जाता है, अगर सिखाया जाता है तो बच्चों को घर में सबको अपने अपने सफाई का समाज में सिखाया जाएगा,
1: घर से समाज तक, समाज से जन भागीदारी, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। चलिए अक्षय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

ये आकाशवाणी का चाईवासा केंद्र है एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बज रहे हैं। पेशे खिदमत है गजलों का हमारा कार्यक्रम महफिल। फनकार हैं हरिहरन।

महफिल। इस कार्यक्रम में आज के फनकार थे हरिहरन, और अब पेश है फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुरों के रंग। इसमें यह है फिल्म शमिताभ का गीत

यह है सुरों के रंग कार्यक्रम की आखिरी मिनट। ऋचा शर्मा और अमिताभ बच्चन की आवाज़ों में फिल्म का नाम है बागमा।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

सामीन कार्यक्रम में सुरों के रंग में आज आप सुन रहे थे चंद मिले जुले गीत। यह आकाशवाणी का चाईवासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के

0: दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhumi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें semiconductor industry का एक preferred destination बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Mr. Modi said, the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event this afternoon, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said, investment commitments worth around 1 lakh crore rupees have been received so far under the Semicon 2.0 ecosystem. He said, India will target at least 200 startups and companies engaged in chip design under the next phase of its semiconductor mission, Semicon 2.0. The three-day conference and exhibition bring together global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment, and develop